उनका मुल्क बर्बाद हुआ और गांधी जी के रास्ते पर चलकर वतन अपना आजाद हुआ।

आए वे रुसके मेरे हासे रोंदे याद तेरी विच चन्ना नैन तो रहन प्यासे हाय उंज नहीं आना ते मर्जी है तेरी किते सुपने अंदर ही आ जा मुदता हुईयां बिछड़ियां नू जीत्या एक वारी मुख दिखला जा।

0: एक बार और मिल जाए मुझे।
1: जस्ट वंस, फिर कभी उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

भगवान राम का ध्यान करने से हमारा ये जन्म तो सुधर ही जाता है, लेकिन इतना ही नहीं, आने वाला जीवन भी सुधर जाता है।

0: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300
1: 1274-488-935।

0: प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना है स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहने तीला है सिर्फ दो पौंडना, कानस लाने ना एक पौंड, छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सुनना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274 4485935।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है, जो कि 103.2 एफएम स्टेडियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देती है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो आप हमें ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्क्री, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और चंद दिनों के बाद आप हमें डाबी शहर में भी सुन सकेंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप सनला रेडियो को सुनना चाहते हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.sunriseradio.fm पर आप हमें कहीं भी सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का, जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक। अब से लेकर 12 बजे तक आपकी डेडिकेशन है और 12 और 2 के दरमियान आपके लिए लाइव कॉल का सिलसिला होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। और साथ में शुक्रिया अदा करूंगा कामरान साहब का, जिन्होंने पिछले हफ्ते मेरी गैर मौजूदगी में आज का प्रोग्राम जो है वो उन्होंने किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। शुक्रिया कामरान भाई आपका। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनला रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। अल्ताफ राजा और जनाब सोनू निगम की आवाजों में आपने ये प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:15, यानी कि 11:15। साथ में इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है जनाब। तो कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा सॉन्ग होगा जनाब, क्योंकि हमें फ़ोन किया राजा तुफैल साहब। बड़े अरसे के बाद जनाब आपने हमें फ़ोन किया, अच्छा लगा आपने फ़ोन किया और अपनी प्यारी सी आवाज़ से नवाज़ा, प्यारी बातों से भी नवाज़ा हमें, और मुलाकात भी हुई आपसे फ़ोन पे। और बड़ा अरसा हो गया था, दोनों भाइयों की बात नहीं हो पाई थी, तो अच्छा लगा आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाला गीत आपके नाम करूँगा इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद अय्यूब चौहान साहब, आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा जो आपने फ़ोन करके हमें कहा कि आते ही आपका कॉल आया कि मैं भाई सुन रहा हूँ और मेरे लिए भी कोई अच्छा सा गाना लगाना और कोई दोस्तों के नज़र भी कर देना। तो ठीक है जनाब, आपकी जानब से आपके दोस्तों के नाम गीत होगा। उसके बाद वाजिद भाई एड्रेसफील्ड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपने चौधरी फरियाज साहब के लिए गीत सुनना चाहा तो आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274।

का। और अभी जनाब तौसीफ गुजर साहब आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आप लगता है गालबन पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। इस वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी में और साथ में प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, तो जनाब आप अपने दोस्त फैसल के लिए की सुनना चाहते हैं और आपने फरमाइश की सिर्फ ये कहा कि नुसरत फतेह अली खां का कोई गीत लगा दें, कोई पर्टिकुलर गीत आपने नहीं कहा, लेकिन कहा कि कोई भी नुसरत फतेह अली खां का गीत हमें सुना दें। तो जनाब आपका हुक्म सर आंखों पर, आप सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में ये गीत। और आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा सभी सुनने वालों के नाम भी।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन जनाब जो गीत मैंने पेश किया था तौसीफ भाई आपकी जन्म से फैसल के लिए प्ले किया था, उम्मीद रखता हूँ आप दोनों दोस्तों को पसंद आया होगा। और अब दोस्तों वक्त जो है हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो चुका है और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा अयूब चौहान साहब आपके नाम होगा और भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब माचस्टर से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आपके नाम भी करेंगे और दीकर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

जी दोस्तों, अभी आपने साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। जावेद मीर भाई, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप ने रफी साहब का गीत सुनना चाहा तो जरूर प्ले करूंगा आपके लिए। अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो वक्त हो चुका है, थोड़ी देर के बाद यानी कि वक्त होगा कमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी, तो आपके लिए प्ले करूंगा। और उसके बाद हीरा खान साहब, फोन करने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और नसरीन साहबा, आपने भी फोन कर रही हैं, आप आपके नाम भी करेंगे। और उसके बाद किसी ने मुझे फोन किया, आखिरी डिजिट है 8444, आपका नाम नहीं आया, आप दोबारा फोन कीजिएगा। तो चलते हैं, सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब दोस्तों वक्त जो है हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, और पहले कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:46, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 11। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद जावेद मीर भाई साहब ने कहा कि वो जनाब रफ़ी साहब का कोई गीत सुनना चाहते हैं। तो जनाब जावेद मीर भाई, आपके नाम करते हैं ये रफ़ी साहब का गाना कमर्शियल के बाद जो होगा। और आपके साथ साथ हीरा खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी होगा। और तारिक जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का मेरे भाई, आपके नाम भी होगा। अयूब चौहान साहब और भाई रुखसार अहमद साहब और जनाब वाजिद भाई डस्वीज़े और राजा तुफैल साहब और जनाब दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा।

0: उम्मीद ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं
3: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, जावेद मीर भाई ने कहा था रफ़ी साहब का गाना अपने करना, तो जनाब उम्मीद रखता हूँ जावेद मीर भाई आपको अच्छा लगा होगा। और नसरीन सबा आपने फ़ोन किया, और आसमा कह रही हैं कि वो ऋतिक रोशन की फ़ैन हैं और कहती हैं कोई उनकी फ़िल्म का कोई गाना जो है वो सुनना चाहती हैं, तो चलते हैं उनके नाम करते हैं। आसमा आपके नाम और आपके साथ साथ जनाब दीगर जितने दोस्त सुन रहे हैं सब के नाम करते हैं, तो चलते हैं सुनते हैं आशा भोसले और उदय नारायण की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने उदय नारायण और आशा भोसले की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और दोस्तों, इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि अब कोई गीत नहीं होगा, क्योंकि एक मिनट और कुछ सेकंड रहते हैं, तो एक मिनट कुछ सेकंड गाना तो नहीं सुन सकते। लेकिन जनाब, आपके लिए जो है वो मैं ऐसा करूंगा कि बैकग्राउंड जो है ना, म्यूज़िक बैकग्राउंड नहीं चलाऊंगा, बल्कि नागिन फिल्म का म्यूज़िक आपको पता है वो चला देता हूं। तो आप म्यूज़िक सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मिलते हैं खबरों के उस पार।

0: साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं जनाब। और अब कोई डेडिकेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स होंगी जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत आप सभी सुनने वालों के नाम, उसके बाद दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: The hour brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:13 सीएन के 12:13 और जैसा कि आपको पता है कि 12 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होता है, आप कोई डेडिकेशन नहीं होगी और हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं जनाब, मैनचेस्टर से अयूब चौहान साहब और ब्रेडफोर्ड से एम खान साहब। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद दोस्तों लाइव कॉल्स लेंगे और इन दोस्तों से मिलेंगे।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि लाइव कॉल का सिलसिला होगा और जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं तालियों की गूंज में मैनचेस्टर, जहां अयूब चौहान साहब इस लाइन पर मौजूद हैं। उनको तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम, जी एन यू सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हो जाता हूँ जब आपकी प्यारी सी आवाज सुनता हूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
0: पता नहीं,
1: मेरी पूरी वीक जो है ना संडे मुलाकात होती है तो पूरा हफ्ता जो है ना बहुत मेरा अच्छा गुजर जाता है।
0: लेकिन ये आप वैसे ही मुझे बटर लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पूरा हफ्ता एक संडे को कैसे, वेंसडे भी मिलते हैं ना मुझे?
1: कभी कभी मिलते हैं, हर वेंसडे तो नहीं
0: मिलते, तो है ना मिलते तो है ना?
1: हाँ मिलते हैं।
0: हाँ तो ये संडे ना कहें,
1: ये मुलाकात जो होती है ना इसके कहते, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: ये मुलाकात एक बहाना है, सिर्फ हमने आपसे लड़ना है।
1: आप तो जानते हैं मुझे लड़ाई करनी अच्छी नहीं लगती।
0: अच्छी लगती नहीं, लेकिन लड़ते जरूर हैं।
1: नहीं नहीं, मैं लड़ाई नहीं करता, लड़ाई से दूर भागता हूँ। हाँ कभी कभी दूसरे लोगों को आपस में लड़ा देता हूँ।
0: हाँ लड़ा देते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है अयूब चौहान साहब, दूसरे लोगों को लड़ाना। वेरी बैड, वेरी बैड,
1: थोड़ा बहुत शुगल हो जाता है ना।
0: अच्छा, आपके लिए शुगल होगा तो अगलों के बेचारों की ना किसी का नाक रहेगा ना किसी का दांत रहेंगे।
1: सीरियस बात नहीं होती ना, बस थोड़ा सा तू मैं तू तू तो मैं हो जाती है।
0: अच्छा अच्छा, तू मैं कराते हैं खाली
1: जी।
0: अच्छा फिर ठीक है,
1: पर छुड़ा भी देता हूँ क्योंकि उसमें भी मुझे कुछ पॉइंट स्कोर करने होते हैं ना।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप जो है ना आप बड़े शरीर हो गए हैं ना बहुत ज्यादा।
1: मैं क्या करूं, जैसे मेरा ऐसे लोगों के हाथ से वास्ता पड़ा है। आप हमारे एक दोस्त है मुर्द में, मेरे जिगरी दोस्त है, 35 साल से उनके साथ गुजार रहा हूँ। तो बस
0: मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब उस बंदे का जिक्र करते हो तो उसका नाम लिया करो
1: जी, अफजल खान।
0: हाँ ऐसा बोलो ना, क्यों झिझक महसूस करते हैं आप?
1: नहीं मैं झिझक नहीं महसूस करता तो, अच्छा मैं शायरी सुना देता हूँ
0: जी
1: आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा ये आपने अपने नागिन वाला कांस म्यूजिक प्ले किया था, ये अच्छा था। मैंने ये फिल्म ब्रेडफोर्ड में देखी थी।
0: अच्छा
1: एक दो बड़ा सा
0: तो मुबारक हो आपको,
1: आपको भी मुबारक।
0: अच्छा
1: तो ये है शायरी आमिर मुश्ताक साहब ने कोई। चांद भी निकला सितारे भी बराबर निकले,
0: वाह क्या बात है,
1: मुझसे अच्छा तो शब गम के मुकद्दर निकले,
0: वाह वाह क्या बात है।
1: शाम होते ही बरसने लगे काले।

0: है
1: हाँ हाँ,
0: उससे कह दो कि अभी घर से बाहर, अभी घर से ना बाहर निकले।
1: हाय हाय, क्या बात है।
0: प्यार की शाख तो जल्दी ही समर ले आई।
1: हाय हाय हाय, क्या बात है।
0: दर के फूल बड़ी देर में जाकर निकले।
1: हाँ हाँ,
0: दिल है हंगामा तलब, ये भी खबर है तुझको।
1: हाँ हाँ,
0: मुझसे होगी एक शख्स को बाहर निकले।
1: वाह जी वाह, क्या बात है।
0: तो ये तो शायरी थी, तो अब लतीफे सुना देता हूँ मैं आपको।
1: अच्छा जी,
0: ये असल में ये बुक बड़ी मोटी है, इसको उठाना पड़ता है।
1: ओए होए होए होए, बंदा रख लेना साथ में।
0: बंदा को हाँ मिलता कहाँ, किताब को तो अमीर आदमी आपको मिल जाते हैं ना।
1: अच्छा।
0: आपको भी नहीं मिलते। एक दफा आपके पास 70 आदमी होते थे।
1: अच्छा।
0: लाइन लगे हुए, आप तो कोई भी नहीं है। ये आपका डायलॉग है, मेरा नहीं है।
1: आपकी कमजोरी है, मैं क्या करूं
0: जी।
1: आपकी कमजोरी है ना जनाब, मैं क्या करूं।
0: अच्छा, इसलिए अगर तुम काम छोड़ के जा रही हो तो मेरे शोर के लिए खाना कौन पकाएगा। तुम भूल गई हो, तुम्हारे हाथ का पक्का खाना बहुत तारीफ करते हैं। प्लीज मुझे मुसीबत में डालकर मत जाओ, इन्हें कैसे राजी रखूंगी। मालकी ने मिनट लेजे में गरीली खातून से ठहरे, बरका चेंज कर।
1: मैं खुद ही कहने वाला था कि आप रुक जाओ।
0: तो मुलाजमा ने कहा, बेगम साहब आप शोर की तो बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि वो मेरे साथ ही जा रहे हैं। नौकरानी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया।
1: क्या बात है। अच्छा,
0: डॉक्टर ने मरीज को नसीहत देते हुए कहा, ये दुआ पाबंदी से इस्तेमाल करना और बड़ी सी बड़ी मुसीबत को भूलने की कोशिश करना। मरीज ने घबरा कर कहा, आस्ते बोलिए डॉक्टर साहब, वो मुसीबत बाहर बैठी हुई है।
1: अच्छा,
0: तो ठीक है जी, मैं फिर किसी दिन आपकी महफिल में हाजिर होऊंगा।
1: जरूर जरूर जी,
0: आपने दुख सुख सुनाने के लिए।
1: ठीक है ठीक है सर, दुख तो पता नहीं कितने आपको, मुझे समझ नहीं है। कभी सुख की बात भी कर लिया करें ना, सुख जो है ना उसकी बात ज्यादा किया करें।
0: तो चौधरी फरियाद साहब का मोहब्बत भरा सलाम, चौधरी मुजफ्फर साहब का मोहब्बत भरा सलाम। एक हमारे दोस्त है मुश्ताक साहब, पता नहीं पाकिस्तान से वापस आए कि नहीं, उनको भी मोहब्बत भरा सलाम।
1: जी जी,
0: तो इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे
1: जरूर जरूर जरूर मुलाकात हो।
0: ठीक है जी, सदा
1: से बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ये थे अयूब चौहान साहब, क्या बात है जनाब, प्यारी शख्सियत मैनचेस्टर से। और अब दोस्तों चलते हैं तालियों की गूंज में, ब्रेडफोर्ड वापस आते हैं जहाँ एम खान साहब मौजूद है। एम खान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरी तरफ से आपके पूरे साथ सुनने वालों को, सुनने वालियों को, सबको सलामती और खैर। इकबाल के चाहता हूँ
1: जी।
2: इकबाल ने मौजूदा जमाने की कुछ ज्यादतियाँ, कुछ सुकून, कुछ परेशानियों का जिक्र किया, उसका अपने बड़े खूबसूरत तरीके से इंसान को बाखबर किया। गुरु कैद नहीं है, ये इश्को मस्ती है। ये जबरो कैसे मुमकिन नहीं जान बानी।
1: वाह वाह, क्या बात।
2: क्या क्या किया है गुलामी में मुबतला तुझको।
1: वाह,
2: के तुझ से हो न सकी फकर की निगेबानी।
1: वाह क्या बात है, क्या बात।
2: मिसाले माँ चमकता था जिसका दागे सुजूद।
1: बहुत खूब।
2: मिसाले माँ चमकता था जिसका दागे सुजूद, खरीद ली है फिरंगी ने वो मुसलमानी।
1: बहुत खूब।
2: हुआ हरीफे मैं वो आफ्ताब तू जिससे, रही ना तेरी रही।

0: तेरे सितारों में वो दरख्शानी।
1: वाह वाह बहुत खूब।
0: आगे मियां साहब का एक अपना मुकाम है, मियां साहब ने इल्म वालों अकल वालों हुनर वालों को जरा झंझोड़ा है कि तुम्हारा इल्म अकल हुनर जो है इसको आजमाया जाएगा, इसको टेस्ट किया जाएगा। अकलू इल्मु हरर हुनरु खूब तरह आजमाया, इसको वफा शराफत तक के न्यू इदा में लाया।
1: वाह क्या बात है।
0: रात त्याड गठिया गुजारी जी ऐसा हुन रलिया।
1: वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब।
0: मोतू बराबर बुछोड़ा सुजुदा, क्यों कर जासी चलिया।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: मेरे आन होए दिन पूरे कूच कर कूच करे सां इत्थू।
1: वाह।
0: छाती दाग सजन दा लगसी,
1: हाय हाय।
0: पोषण लमिया विथू।
1: वाह।
0: इसके जोड़ दिल जो सीते, हाय हाय। इसके जोड़ जोड़ जो दिल सीते ले कुदरत दी सुई। एको जिंद एको दिल बनिया दूर हुईया सब दुनिया। एक पल सैफ मलूक एक एक पल सैफ मलूक है बाजू। जीवन मुश्किल होया इधरू दोस्त उधरू मारो, इधरू दोस्त उधरू मारो बुछोड़ा सर पर आन खुलाया। मेरे नाल ना जावन उसदा नहीं छुपाया या पुजदा। कैवें मेल साडे होंदे जैवें अजाबों पुजदा।
1: क्या बात है।
0: मियां साहब फरमाते हैं कि अकल वाला वो आदमी है जिसने इलम अकल शऊर फैम और फरासत सब्र से ऐसे काम किए, लोगों तक इलम बचाया और लोगों तक इलम बचाने के बाद उनसे कुछ मुआवजा हासिल न किया। ऐसी ऐसा मद जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इलम को आपकी तरह आने वाली नस्ल के दिल और कुलूम को मुनव्वर करते हैं, अल्लाह रहती दुनिया तक उनका नाम खवातीन और असरात का बाकी रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। अल्लाह आपको सलामत रखे। ढेर सारी तालियां इनके लिए जनाब, अहम खान साहब के लिए और इनके साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ जनाब भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब। और क्योंकि छोटा सा कमर्शियल का ब्रेक का टाइम भी हो गया है तो चलेंगे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जानेब, उसके बाद भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब से मिलेंगे। सुनते रहिएगा।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303।

0: जी दोस्तों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब ब्रैडफोर्ड से। तो देर सारी तालियों की गूंज में खुश आमदीद वेलकम जी एन यू सत बिस्मिल्ला कहेंगे जनाब भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब को। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जनाब मोहतरम साहब सदर ग्रामी कदर, हर दिल जी शख्सियत, बावकार बाजोक बाशोक, बहुत ही नफीस, बहुत ही लतीफ और बहुत ही शफीक मेरे मोहतरम आली जनाब मोहतरम आमिर शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब?
1: अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर, और माशाल्लाह आपकी खैरियत से पता आगाही हुई है तो बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह ताला ने आपको फिर तंदुरुस्ती वाली जिंदगी का फरमाई है, और आपके लिए बहुत ही दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत कामला।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम को शुरू करते वक्त मैंने कामरान का भी शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते प्रोग्राम कवर किया था मेरा। ये मुझे आप दोस्तों का ख्याल भी बहुत रहता है कि आप लोग कुछ मिस ना करें, तो इसलिए कामरान से रिक्वेस्ट की थी, वो आए थे, उन्होंने प्रोग्राम किया था, उनका भी शुक्रिया और आप दोस्तों का भी शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतनी दुआएँ करते हैं।
1: जी सर, इसमें शुक्रिया अदा करके तो आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि बा किरदार और माशाल्लाह इतने मुजर शख्सियात आती हैं जिनसे यकीन करें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें आप हमें मिस करते हैं, हम जो है ना हम आपको मिस करते हैं।
0: सही है, ताली ताली दोनों हाथों से बजती है ना, कुछ आप लोग हमसे सीखते हैं, कुछ हम आप लोगों से सीखते हैं, और आप हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हम आप दोस्तों के लिए दुआ करते हैं, यही सिलसिला चलता है ना जनाब।
1: जी ऐसा ही, क्योंकि ये तो एक कहते हैं ना कि एक एक फैमिली बन गई है, क्योंकि जैसे कामरान भाई आते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि अमर भाई आज नहीं आए, खैरियत तो है सब, या काशिफ भाई है उनसे पूछते हैं, या अपने परवेज खाना, जितने भी हमारी बहनें जो प्रेजेंटर हैं सब, ये सब एक फैमिली की तरह
0: ही है।
1: तो जब कोई नहीं आता तो फिर पूछते हैं यार अल्लाह ताला खैर करके वो क्यों नहीं आए, चलो कोई जाती मसरूफियात हो जाती हैं तो वो जब नहीं आते तो पता अल्लाह खैर करे,
0: सही सही करना हो,
1: क्योंकि जिंदगी का अमर भाई कोई पता नहीं,
0: कोई सही पल का पता नहीं होता है भाईजन, पल का पता नहीं होता
1: है। जी जी, तो अल्लाह ताला है, क्योंकि ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं, हम तो कहते हैं ना कि सभी के शुक्रगुजार हैं, यकीन करते हैं।
0: जी जी,
1: सब आपकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये हमें एक प्लेटफॉर्म अता किया जिसे हम जो है एक दूसरे की खैरियत मालूम कर रहे थे, क्योंकि ना आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ, ना काशिफ को, ना कामरान को, ना परवेश भाई को, क्योंकि हम किसी से मिले नहीं।
0: सही है।
1: लेकिन तो बाद का रिश्ता ऐसा है कि बाद की पहचान ऐसी है जिसे हम एक दूसरे को जानते
0: हैं। सही है, सही। नहीं, परवेश खान से आप तो मिले हुए हैं ना?
1: जी वैसे ही मिले हुए हैं दिल से।
0: मैं एक बार सुन रहा था प्रोग्राम आप परवेज का, तो उसमें आप कह रहे थे हम दोनों मिले वहाँ, वो यूरोप में कहीं गए हुए थे, बोलते थे इकट्ठे हॉलीडे किए वहाँ मिले, आज कह रहे मिले ही नहीं है, ये क्या बात हुई भाई?
1: नहीं यार, तो मेरा ख्याल है ये आपको
0: स्पेन में आप गए हुए थे कि पता नहीं किधर, यही आप जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था प्रोग्राम, तो उसमें आप कह रहे थे कि वहाँ हॉलीडे गए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों को, तो आप आज कह रहे हैं मिले ही नहीं आप?
1: नहीं, मेरा ख्याल है या तो मैं आपको बताने में, या मैं कहते कि वो समझाने में थोड़ी सी, मैं हो सकता है कि मेरी गलती हो, मैं इसलिए क्योंकि वो
0: नहीं, मैं खुद सुन रहा था ना प्रोग्राम।
1: नहीं वो आप, मेरा ख्याल है क्योंकि बात बात में होती है ना, मैंने वो गए थे स्पेन में बार्सिलोना में।
0: अच्छा,
1: तो मैं बार्सिलोना में 7 ईयर रह के आया हूँ उधर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो जब उन्होंने मुझे वो, क्योंकि अक्सर वो मेरे साथ जो है ना वो बगैर रेडियो के जो है ना वो मेरे साथ रास्ते में रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो उन्होंने फिर कुछ वीडियो भेजी थी, तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे मैं काम करता था, यहाँ पे मैं जॉब करता था, तो वैसे मैं इतना, तो फिर इस लिहाज से उन्होंने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, समझने में, मेरे समझने में फर्क लग गया ना, लग जाता है, कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा है भाई, उम्र का तकाजा है।
1: नहीं नहीं सर आपको नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरी समझाने में या मेरी बात करते नहीं हो सकता। आप तो माशाल्लाह जितने पढ़े लिखे
0: नहीं, आप मैं थोड़ा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा हैरान हुआ कि यार उस दिन मैंने सुना था भाईजान ये कह रहे थे, आज भाईजान कहते हैं मिले नहीं, तो हाँ हमारी तो नहीं मुलाकात हुई आपसे, लेकिन इश्तियाक बहुत है मिलने का।
1: यकीन करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी का, तो मेरा भी बहुत यकीन करें कि मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं आप जैसी माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी इतनी माशाल्लाह वेल एजुकेटेड जो शख्सियत है ना, उनसे मैं कुछ सीखूं और इनसे मैं इनके ज़ियारत का शर्फ हासिल करूं। हैं जी, तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा,
0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह हमारी आपसे जो ना हमारा जो शर्फ हासिल होगा आपकी ज़ियारत,
0: इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे दानू भाई इंशाल्लाह।
1: तो मैं क्योंकि ज्यादा का टाइम नहीं, मेरे बाद जो शख्सियात या बहुत हस्ती है ना उसको लोग बड़े जोर
0: हाय नदीम मंसूर क्या बात है क्या बात है क्या
1: तो मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी शख्सियत को ऐसी हस्ती को जो ज्यादा वेट कराऊं कि
0: हाँ,
1: ये तो आपका पान है, ये आपका आला जरफ है जो आप मेरे जैसे को छोटे से बंदे को भी
0: नो आप ऐसा देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार मना किया था इस तरह ना कहा करें, आप बहुत प्यारे हैं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत वाली उम्र दे, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, और आप बहुत प्यारे हैं, हम आपको इतने दिल से इज्जत करते हैं, आप बहुत अच्छे भाइयों में से हैं, तो आप इस तरह करके हमारा दिल ना तोड़ा करें।
1: यकीन करें कि मैं छोटा इसीलिए कहता हूँ कि आपको पता है कि छोटा बंदा इंसान कब बंदे
0: नहीं उम्र से छोटे हैं कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है लेकिन ये दूसरे का दूसरा जो छोटा आपने ये उम्र वाला नहीं कहा ना, अगर वो कहते तो मैं खुशी से एक्सेप्ट करता क्योंकि मैं हूँ ही बड़ा आपसे, लेकिन लेकिन वो दूसरे वाला आपने छोटा कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा।
1: नहीं मैंने वो कहा है जो बंदा दूर से नहीं देखता, जब दूर से देखे तो बंदा छोटा नजर आता है, या बंदा गरूर से देखे तो बंदा छोटा नजर आता
0: है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत प्यारे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
1: मैं टाइम नहीं दूंगा आपका, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मुद्दे पे आऊँ क्योंकि मेरे बाद मुझसे पहले जो हस्तियां पढ़ माशाल्लाह आपने मखसूस अंदाज में अयूब चौहान साहब आए थे और माशाल्लाह इतने वेल एजुकेटेड और माशाल्लाह बहुत ही तालीम याफ्ता माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको क्या नॉलेज फरमाया, अहम खान साहब आए थे हैं जी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखी और उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी था, क्योंकि ऐसी हस्तियों से हमें सीखने को मिलता है।
0: आमीन आमीन।
1: तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से नहायत मोहब्बत, नहायत चाहत, नहायत अकीदत से बहुत बहुत मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा बहुत बहुत सलाम, और हमारे जो चैंपियन है खान परवेज साहब उनको बहुत बहुत सलाम, हमारे उस्ताद मोहतरम है जनाब मोहतरम शकील साहब फ्रॉम बरले माशाल्लाह वो भी आते हैं और माशाल्लाह अपने मखसूस अंदाज में शायरी उनकी भी बात कमाल,
0: वो कमाल कमाल कमाल की,
1: ये बहुत ही दुआएं हैं उनके लिए। आज मैं आपके सामने जो बोलने का थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना कि बोलने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, ये मैं इन हस्तियों की वजह से ये इनकी बदौलत मैं सब कुछ कर रहा हूँ। यकीन चौधरी फरियाद साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी फरमाए, अल्लाह ताला उनके भाई को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी फरमाए, महबूब साहब हैं, राणा नबी साहब हैं, वाजिद भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी, जो वो भी अजीत हैं वो भी बीमार रहते हैं जी, अल्लाह ताला उनको, जंगीर भाई हैं, काशिफ भाई, कामरान भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, आपी गजाला जबीर साहब है, अतीका आपी हैं, आपी अदीबा जी हैं, आपी शनाज मंसूर साहब है, हमारा आपी है, और आपी नजीद है, और हमारी मोहतरमा सहम जी हैं क्योंकि वो भी हमारी उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ अहल वयाल के साथ संगत साथ के साथ अल्लाह ताला उनके इज्जत में रिज्क में वक्त में इजाफा अता फरमाए, और जो हमारे भाई टैक्सी ड्राइवर हैं, जो डिलीवरी ड्राइवर हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो टेक अवे काम कर रहे हैं, सभी को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो सर छोटी सी पंजाबी की गजल है ठीक है, और मैं नदीम मंसूर साहब से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा ख्याल में बहुत ही टाइम लग गया जिसके
0: सही है सही,
1: क्योंकि माफी तो बनती है ना,
0: सही है सही,
1: छोटा लफ्ज़ है
0: सही सही सही,
1: और मुझे कभी उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर देंगे
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा पंजाबी की है जनाब, और मैं तमाम आपके रोशन समातों की नजर करना चाहता
0: हूँ जरूर।
1: क्या लिखता है, ऐ दुनिया ही बस मतलब दिए एनु गरज दा ठंडा आन देने,
0: वाह वाह क्या बात है,
1: केड़ा लोड़ा पूरियां कर छोड़े उस बशर नु बंदा आ देने,
0: वाह जी वाह,
1: और बुल्ली ना मार इस दुनिया से मतलब नु बंदा आ देने, जिस पांडे विच बंदा खाज लेंदा उस उन पांडे नु बाद जे गंदा आ देने,
0: ओ हो क्या बात है,
1: बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। कोई बात,
1: आपको सलामत रखे और आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप हमेशा मेरी दुआ में रहते हैं।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब, ढेर सारी तालियां उनके लिए, और तालियों की गूंज में ही खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, जी उन्हों कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे जनाब नदीम मंसूर साहब को। जी सजनो मखणा मलाई दे पेड़ियो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी जी
2: कैसी
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ?
2: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
0: की लेके आए हो सजनो?
2: एक बारी मिल सोनिया तेरा मिलना जरूरी है।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
2: ए थोड़ी नजर सामने नजर।
0: जी जी जरूर।
2: एक बारी मिल सोनिया तेरा मिलना जरूरी है,

0: दस केड़ी मजबूरी ए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शुक्रिया आपका कि हमारा शुक्रिया, शुक्रिया आपका जो आप आए प्रोग्राम में शमूलियत की और इतना प्यारा सुरीला गीत सुनाया हमें, मिठा सा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अब अगले आवर में आपका इंतजार करेंगे जनाब, बहुत शुक्रिया मेरी जान। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब नदीम मंसूर साहब, क्या गीत इन्होंने सुनाया जनाब। और अब जनाब वक्त हो चुका है कमर्शियल का और हमारे साथ जुड़े हुए जावेद मीर भाई, लेकिन पहले चलेंगे टाइम चेक करेंगे।
3: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:44, इनके 44 मिनट्स पास 12। तो चलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है उसकी जानिब, उसके बाद जावेद मीर भाई को सुनेंगे।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे है जनाब, और हमारे साथ जुड़े हैं महबूब अलाई साहब और सीमा जी। तो अब चलेंगे, पहले हिट ऑफ द आवर सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: की है।
1: जी दोस्तों, अभी मजे जाते हैं, पूरी गजल आपको नहीं सुना पाएंगे क्योंकि काफी दोस्त जो हैं इस वक्त लाइनों पे मौजूद हैं। सीमा जी काम पे थी, वो चली गई, और अब जो महबूब अलाई साहब हैं वो भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, और कहीं वो भी काम पे हैं लेकिन कोशिश कर रहे थे प्रोग्राम में आए। तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में, महबूब अलाई साहब जो हैं उन्हें सुनते हैं। जनाब महबूब अलाई साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू महबूब भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए।
2: अभी आने रहे?
1: बिल्कुल आने रहे जनाब।
2: सब सामिन के नाम करना चाहिए, अभी जिन दोस्तों के नाम रह गया सभी के नाम है। ताज चौधरी मुजफ्फर है, चारक जुल्फी है, महमूद सुल्तान कराची वाले हैं, मीर साहब हैं, और फरियाद भाई हैं, और आसर रियाज साहब, जवेद मीर पापा शफीक है, नवीद भाई हैं, गजाला जी हैं, मीता जी हैं, और आप सब
1: जी से
2: हैं। जहाँ से सिलसिला टूटा था फिर दोबारा कहते हैं कि गले लग कर मिला करो हमसे।
1: अच्छा हाँ,
2: मिला करो हमसे, बावफा है तो हमसे, तेरे साथ मुखलिसम,
1: वाह,
2: साथ मुखलिसम, बेसबब ना गिला करो हमसे, हद हमारी खत्म हुई, चाहत हमारी खत्म हुई, शायद किया करो हमसे।
1: जी जी,
2: क्या करो हमसे, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, बेसबब ना लड़ा करो हमसे।
1: वाह बहुत खूब।
2: बहुत ही छोटी है, बेसबब ना लड़ा करो हमसे, आया है बड़ा जमाने ने, है बड़ा जमाने ने, प्यार से किया करो हमसे।
1: वाह बहुत खूब।
2: प्यार से किया करो हमसे, गेना किसी सूरत, गेना किसी सूरत वादा करो हमसे।
1: वाह बहुत खूब।
2: तो गेना किसी सूरत, दिल से आज वादा करो हमसे।
1: वाह,
2: है बहुत जिंदगी को, अरसे हैं बहुत जिंदगी को, हो जुदा करो हमसे।
1: वाह बहुत खूब।
2: हो खुद को ना जुदा करो हमसे, मिला करो हमसे।
1: क्या बात है।
2: सर मिला करो हमसे, बावफा है करो हमसे।
1: वाह वाह बहुत खूब।
2: आए आ करो हमसे। नहीं था
1: इतना ही? हाँ पहले वो आधा तो हो गया था ना, पहले आधा तो हो गया था। तो एनीवे बहुत शुक्रिया जी।
2: कहते हैं तो एक और पढ़ देते हैं।
1: हाँ पढ़ दें पढ़ दें, क्योंकि अच्छा नहीं, आप काफी देर से
2: होम पे थे। जी क्योंकि शाम थी सबसे अलग मगर आम सी।
1: आहा।
2: सर्दियों की शाम थी सबसे अलग मगर आम सी, पास था मेरे पास था एक अजीब सा एहसास था।
1: बहुत खूब।
2: खास था मेरे पास था एक अजीब सा एहसास था, आ शाल वो के ख्वाब था या ख्याल था।
1: आहा।
2: हुए था शाल वो कोई ख्वाब था या ख्याल था, दर्द गम से थे सोए हुए, भी दर्द गम थे सोए हुए, अनजान रास्तों में खोए हुए, दर्द गम थे सोए हुए, अनजान रास्तों में खोए हुए, हुआ था दीवार से उसे गुर रहा था प्यार से।
1: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
2: हुआ था दीवार से उसे गुर रहा था प्यार से, गुम थी किसी ख्याल में जैसे किसी के वसाल में। गुम थी किसी ख्याल में जैसे किसी के वसाल में, हाथों में उसका हाथ था उसे नैन मिले हुए।
1: वाह वाह।
2: हाथों में उसका हाथ था नैनों से नैन मिले हुए, होंठ जैसे सिले हुए, होंठ जैसे सिले हुए, से ही उसके लब हिले गे शिकवे। फिर जैसे ही उसके लब हिले बरसने लगे शिकवे, वादे हुए सभी इश्क की रस्में हुई।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: कस्में हुई सभी इश्क की रस्में हुई। हाँ ये फरवरी ही की बात थी, शायद आखिरी मुलाकात थी।
1: वाह वाह बहुत खूब।
2: फरवरी की बात थी, शायद आखिरी मुलाकात थी। इश्क के अश्क थे, तमहे काबले रश्क थे।
1: वाह वाह क्या बात।
2: इश्क के अश्क थे, यही काबले रश्क थे, कर भी ना मिल सके, ना मिल सके, शिकवे हुए ना गिले कभी।
1: वाह क्या बात।
2: बिना मिल सके, शिकवे हुए ना गिले कभी, उनकी शान थी सब से अलग मगर आम सी, वो जो खास था मेरे पास था एक अजीब सा एहसास था।
1: वाह बहुत खूब, बहुत
2: था मेरे पास था एक अजीब सा एहसास था।
1: फैज जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आप आए, बहुत प्यारा कलाम आपने सुनाया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है जनाब। तो ये थे जनाब महबूब अल्लाही साहब, ढेर सारी तालियां जनाब उनके लिए। और जनाब इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है कमर्शियल का, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और लाइव कॉल का सिलसिला है जनाब, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद मीर भाई और नदीम मंसूर साहब। तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में, जावेद मीर भाई को सुनते हैं, उसके बाद नदीम मंसूर साहब को सुनेंगे। तो जावेद मीर भाई, एक बार फिर आपको खुश आमदीद, वेलकम, जी एनू सत बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वंस अगेन।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी जनाब,
1: तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: जो आए हैं और जो आने वाले हैं उन्हें भी।
0: जी जी
1: दिला

प्यार वाली सजना नू गल कहन दे कोई, प्यार वाली सजना नू।

नजारा लैंड दे बिल्ला एमे ना तू डोल बो

बोल सारे दुखड़े तुफोल सानू रज के तुस जेड़ा दे कोल बैण दे सानू

0: ठहर जा यार दा, नजारा लैण दे कोई प्यार वाली सजना नू, गल कहण दे कोई प्यार वाली सजना नू, गल कहण दे दिला ठहर जा यार दा, नजारा लैण दे।
1: वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है जावेद मीर भाई। मुनीर हुसैन का गाया हुआ गाना आपने बहुत अच्छे अंदाज में गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा लगा जी। मुखड़ा फिल्म से जी जी
2: जी हाँ।
1: बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
2: शुक्रिया
1: आपका, शुक्रिया सुने हो तुसी आए हो मेरे वीरो, ते इतनी सोहनी रौनक लाई जाए जनाब, तो शुक्रिया तुहाडा, मेरा कहदा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे प्यारे भाई जावेद मीर भाई, ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब। और इस अब जनाब एक बार फिर तालियां वालों शियार हो जाओ, क्योंकि नदीम मंसूर साहब आ रहे हैं जनाब, ढेर सारी तालियां बजाओ उनके लिए जी। नदीम मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी सजनो, मखणा मलाई दे पेड़ियो की लेके आयो?
3: मैं लेके आया कि चन्ना जानी अज कल्ला छोड़ के ना जा।
1: ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या
3: निक्का जिया दिल माड़ा तोड़ के ना जा।
1: ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी।
3: मैं चलो ये मेरे जानी चाह रहे, मैं चलो ये पेश कर दिया।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा
3: जी, जरूर
1: जी।

छोड़ के ना जा, ओ चन्ना जानी अज कल्ला छोड़ के ना जा।

माड़ा तोड़ के ना जा, ओए चन्ना जानी अज कल्ला छोड़ के ना जा। सड़े होए दिलां उत्ते दस के मल्ला मैं।

0: शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका कि आपने इतना प्यारा गीत सुनाया ना यार, क्या बात है, क्या शायरी थी और क्या आपने गुनगुनाया इस गीत को, ओए होए होए होए, सुकून ही आ गया जनाब, मजा ही आ गया, किसी और वादी में पहुंचा दिया आपने। क्या गीत था और क्या बोल थे, ओए होए, लिखने वाले ने भी कमाल कर दी और आपने भी कमाल की गाकर जनाब, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थी बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब नदीम मंसूर साहब की, ढेर सारी तालियां के लिए जनाब, क्या गीत उन्होंने गाया और क्या शायरी थी इस गीत में। और हमारे साथ जुड़ी हुई है गजाला जबीन बहना भी, तो चलेंगे दोस्तों, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है उसकी जानिब चलेंगे, उसके बाद फिर गजाला जबीन बहना से मिलेंगे।

0: हसन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9। टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है, अगर आप शायरी का शौक रखते हों या गीत गुनगुनाने का तो ज़रूर आइएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं तालियों की गूंज में रोशन, यहाँ प्यारी बहना गजाला जबीर सभा इस लाइन पे मौजूद हैं। गजाला जबीर बहना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी तरफ से सब जो आ चुके हैं, महबूब इलाही साहब और जरीद बी साहब और सरयाल साहब
0: जी,
1: और सीमा तो मेरा ख्याल लाइन छोड़ गई।
0: वो दो बार आई है लेकिन वो फिर टाइम नहीं था ना, जल्दी में थी तो मैं ले नहीं सका उनको।
1: होता है, वो काम पे भी होती है ना।
0: जी जी,
1: तो उनको भी मेरा सलाम, जो आने वाले हैं उनको भी मेरा सलाम।
0: जी जी।
1: और मैंने कहा कुछ भाई बहनों को सलाम कहते हुए शर्माते रहते हैं, बहनों को भाइयों को सबको सलाम कहा करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती,
0: गजल
1: पढ़ के। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको।
0: हाँ हाँ हाँ, क्या बात।
1: अब तेरी याद से वहशत
0: नहीं होती मुझको,
1: जख्म खुलते हैं, अजीयत नहीं होती मुझको।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है।
1: जख्म खुलते हैं,
0: अजीयत नहीं होती मुझको,
1: नहीं होती मुझको।
0: वाह।
1: अब कोई आए चला जाए,
0: हाय हाय,
1: मैं खुश रहता हूँ। अब कोई आए कोई चला जाए, मैं खुश रहता हूँ। अब किसी शख्स की आदत नहीं रही मुझको।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत।
1: थैंक यू भाई, थैंक यू। अब किसी शख्स की आदत नहीं रही मुझको, ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर।
0: वाह क्या बात है,
1: थैंक यू भाई। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती
0: मुझको। क्या बात है, क्या बात है,
1: थैंक यू भाई। झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझको, है अमानत में खयानत सो किसी की खातर। है अमानत में खयानत हो किसी की खातर, कोई मरता है तो हैरत नहीं होती
0: मुझको। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मरता है तो हैरत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको। जख्म खुलते हैं, अजियत नहीं होती, होती
0: मुझको। क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपका बहना, आप आई और इतनी प्यारी गजल सुनाई कि क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया बहना। अपना बहुत सा ख्याल रखना, दो में याद रखना, लाफिज लाफिज। ये थी प्यारी बहना जनाब गजाला जबीन सभा, ढेर सारी तालियां उनके लिए। और अब जनाब हमारे साथ जुड़ गई हैं, यहाँ नाम तो शाजिया जी लिखा हुआ है, देखते हैं तालियां गूंज में कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी
2: मैं शाजिया ही हूँ।
0: अच्छा जी, ठीक है, मैंने सोचा नाम शायद ऐसा किसी ने लिख दिया।
2: नहीं नहीं, अच्छा भाई, भाई साहब ने गाया
0: जी,
2: छोटा दिल साडा ना तोड़ के जा।
0: जी जी, नदीम मंसूर साहब ने। जी जी,
2: बहुत नाइस साहब। ये बताइए कौन सी फिल्म का है
0: ये? मेरे ख्याल में फिल्म का नहीं है, ये गैर फिल्मी गीत है, बल्कि मैंने मैं पूछ लूंगा उनसे फिर। जी
2: अच्छा, तो किसने गाया बताएं क्या?
0: मुझे नहीं पता इस बारे में।
2: बहुत अच्छा गाता।
0: अभी अभी नदीम मंसूर साहब सुन रहे होंगे ना, वो आ जाएंगे तो आने में उन्हें कहूंगा आए और बता दें। बहुत प्यारा गीत था, मैंने बोला कमाल के बोल थे। और जी जी, बहुत बहुत प्यारा गीत था।
2: पहले ये सुना नहीं है, फर्स्ट टाइम सुने, और उनसे कहना उनकी आवाज इतनी अच्छी है।
0: जी जी,
2: तो ये गाना से आते रहना चाहिए बस हमारे दिलों में भी।
0: थैंक यू, थैंक यू।
2: थैंक यू बहुत शुक्रिया
0: शुक्रिया आपका जो आप आई टाइम निकाला और कम से कम जिस बंदे ने इतनी मेहनत की इतनी लगन से इतने खलूस से प्यार से हम सब के लिए इतना प्यारा गाना गाया आपने उसके लिए शुक्रिया अदा किया शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया
2: जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे कानों में ये गाना आया हमारा दिल था तो हमारे दिल धड़कनों से उनको सलाम
0: बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी शाजिया जी अल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह हाफिज और ये थी शाजिया जी और नदीम मंसूर साहब अगर आप सुन रहे हैं जो गज़ल आपने अभी हमें सुनाई उसके बारे में मालूमात ले रही थी कि किसने गाई और किसी फिल्म की है या कैसा आप खुद ही बता सकते हैं छोटी सी गज़ल मैं भी पढ़ देता हूँ अब जो बिखरे तो बिखरने की शिकायत कैसी अब जो बिखरे तो बिखरने की शिकायत कैसी खुश्क हवा पत्तों की हवाओं से रफाकत कैसी अब जो बिखरे तो बिखरने की शिकायत कैसी खुश्क पत्तों की हवाओं से रफाकत कैसी मैंने हर दौर में बस उससे मोहब्बत की है मैंने हर दौर में बस उससे मोहब्बत की है जुर्म संगीन है अब इसमें रायत कैसी हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम जो बुझ गए तो हवाओं से शिकायत कैसी अब जो बिखरे तो बिखरने की शिकायत कैसी खुश्क पत्तों की हवाओं से रफाकत कैसी फरदोसी की लिखी हुई ये गजल आप दोस्तों के लिए पेश की तो चलते हैं दोस्तों अब उस गीत की जानिब जो गीत जावेद मीर भाई ने गुनगुनाया जनाब दिला ठहर जा यार दा नजारा लेने दे

0: दिला ठहर जा यार दा नजारा लेन दे आ बहुत ही प्यारा गीत मुनीर हुसैन की प्यारी सुरीली आवाज में आपने दोस्तों सुना पाकिस्तानी फिल्म मुखड़ा से लिया हुआ गीत था और अब कोई कॉल नहीं लेंगे क्योंकि वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है तो जनाब चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान उसके बाद ही दोस्तों आपसे मिलते हैं सुनते रहिएगा संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग तो चलते हैं सुनते हैं जोहर की अजान
1: My favorite radio station, Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफुट के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी समय अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, तो चलते हैं पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:44 यानी कि 44 मिनट्स पास्ट वन। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे नईद अख्तर की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत। उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

जी दोस्तों, अभी आपने नई दस्तर की आवाज में सदाबहार पुराना गीत सुना और अब एक चांद यहाँ निकला, कैसे निकला, बादल से निकल आया जनाब। आपको पता है मैं जब भी ऐसी बातें करता हूँ तो इसका मतलब है शहजादा आया जनाब प्रोग्राम करने। जनाब काशिफ, उसका इंतज़ार कीजिएगा और मुझे अमर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11:25 पे होगी जनाब। तो मुझे अमर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, हमारी जानिब से खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

मैदान में। हमारी तरह कलम कल्ले बैठे हैं या बैठे हैं आप अपनों के दरमियान में। सलाम नमस्ते सासरी अकाल जी आई नो वेलकम खुश आमदीद। कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। और जी हाँ मैं हूँ आपका अपना काशिफ और सनराइज रेडियो पे आप हमें सुनते हैं। जी हाँ 100.6 FM और 103.2 FM। जी जनाब ये तो यॉर्कशायर की वादियों में DAB के जरिए आप हमें सुन सकते हैं लेकिन इसके अलावा दुनिया भर में आप हमें सुनते हैं सनराइज रेडियो .fm के जरिए, गूगल और एप्पल एप स्टोर के जरिए। एंड इफ यू आर स्ट्रीमिंग ऑन TikTok लाइव और थिंकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, जॉइन द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क UK TikTok लाइव एजेंसी helping creators grow their audience, develop their brand and promote it on Sunrise Radio. To find out more and apply, visit the Sunrise Creator Network page at www.sunrise.radio. That's www.sunrise.radio.

और जनाब 3 घंटे का साथ रहता है। आज के दिन आपको पता है हमारा और आपका साथ होता है, हमें तो इंतजार होता है आपका। पता नहीं कि जनाब आपका क्या हाल होता है, हमारे इंतजार में शायद ये हमारी खुशफहमी है, हमारा वहम है कि आपका भी हाल हमारे दिल के हाल जैसा होता है। आज की इस 3 घंटे की मुलाकात के बाद बताइएगा जनाब आपके दिल का हाल और हम बताएंगे आपको आपसे मुलाकात के चाव में हमारे दिल का हाल क्या क्या होता है। 01274306666 यह मेरा और आपका राबता नंबर। प्यार हो जाए जनाब, गपशप होगी, गीत होंगे।

0: Your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइजर रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 2:16 हो गए हैं। और ख़ास तौर पे जनाब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे बड़े भाई और जनाब बड़े ही मोहतरम आमिर भाई का। ख़ास तौर पे मैंने आज जनाब उनका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि बहुत बार हम यहाँ पे आते हैं, हमारा कोई ना कोई साथी प्रेजेंटर यहाँ पे मौजूद होते हैं और स्टूडियो में एक रौनक हमेशा से आबाद रहती है। लेकिन जनाब जो आपसे बड़े होते हैं, उस्ताद होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो वो एक शफकत का साया बन के होते हैं। वैसे तो दोस्ती यारी बहन भाइयों की तरह हमारा भाईचारा सनराइज़ रेडियो की पूरी फैमिली के साथ होता है, लेकिन जब आपसे बड़े कोई आपसे पहले यहाँ पे मौजूद होते हैं तो हमें एक बड़ी एक ऐसी फीलिंग आती है, बड़ी ही ऐसे इंसान महसूस करता है, बड़ा ही महफूज, जैसे कोई किसी जगह पे इंसान जा रहा हो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम आते हैं, उन्होंने सारा हमारे लिए स्क्रीन पे सॉर्ट आउट किया हुआ होता है, और जब वो नहीं होते हैं तो उनकी कमी महसूस होती है। आपने भी महसूस की होगी, हमने भी बहुत महसूस की। और दुआ किया करें जनाब अपने लिए जब हाथ उठाते हैं तो, ख़ास तौर पे हमारे जो साथी प्रेजेंटर्स हैं सारे जो आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे आते हैं, उनकी और उनकी फैमिलीज़ की और उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए भी हम सब सनराइज़ रेडियो की पूरी टीम को भी बराए मेहरबानी इसमें शामिल किया करें, क्योंकि अमर भाई की सेहत कुछ नासाज थी बड़े दिनों से, और अभी उनको हशाश देख के जनाब मैं भी बिल्कुल हशाश बशाश एक बार फिर से हो गया, और बड़ा अच्छा लगा बड़े दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई। तो बस यही मैंने कहना था विदाउट किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के, एक दरख्वास्त करनी थी कि हम सब जितनी भी मेरी पूरी टीम है सनराइज़ रेडियो की, जनाब हम सबको अपनी दुआओं में ख़ास जगह दिया करें, ताकि आने वाली जो मुसीबतें हैं वो दुआओं से टल जाती है, ताकि आपको भी रब किसी भी मुसीबत से या आजमाइश से महफूज रखे, और साथ साथ हमें भी जब आप दुआ में याद रखेंगे तो रब हमारे पे भी, हो सकता है आपके अल्फाज के तो फैल ही हम पे भी रब करम करे हमारी पूरी टीम पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, इतने प्यार से आप हमें सुनते हैं, कॉल्स करते हैं, और थोड़ी देर में कॉल्स का सिलसिला और सब आपकी डेडिकेशंस, आपकी बातें मज़े मज़े की, आपके नामों के साथ गीत जोड़ के सब कुछ पेश होगा जनाब। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जनाब।
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: क्योंकि सोने मिठाई महंगाई में चांदी ले आई।
4: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
5: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
6: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station.

जी जनाब, तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और जबरदस्त सा गीत आपने सुना। उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा जनाब, हमारे साथ आज हलीमा बाजी लेगी सबसे पहले, और हलीमा ने जो गीत बताए हमें, अच्छा उनकी जो सॉन्ग की टेस्ट है ना, जो चॉइस है उनकी, वो हमारे गीतों के टेस्ट के साथ बड़ी मिलती है, और उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है, और वो हमेशा कहती हैं जब भी मैं कोई गीत चलाता हूँ, लगाता हूँ, तो वो कहती हैं कि ये मेरा भी फेवरेट है। मेरे ख्याल में आप मेरा दिल रखने के लिए कहती हैं। एनीवेज, आज फिर आपने, हमने जो भी गीत चलाए, आपने कहा मेरे फेवरेट गीत हैं, और ये गीत आपने भी बताया, और लास्ट शो में भी किसी ने वो गीत हमें बताया था जनाब, वो ज़रूर उसका हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि एक और गीत हमने क्यों करके रखा हुआ है, और वो जनाब होगा नाम, हीरा आई हैं आज हमारे शो में बड़े दिनों के बाद, उन्होंने कहा कि आप हमें भूल गए। मैंने कहा मुझे लगा कि आप हमें भूल गए, तो आपने कहा नहीं जी, हम आपको टिकटॉक पे फॉलो करते रहते हैं, मैसेज करते हैं, आप जवाब नहीं देते। नहीं, वहाँ नहीं जनाब, यहाँ पे हम जवाब देंगे सनराइज रेडियो पे, वहाँ की कोई गारंटी नहीं है, वो तो सोशल मीडिया तो एक दिखावा होता है ना, मेरे ख्याल में। मरहला, आप इस बात से अग्री करती हैं, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब जितने भी दोस्त मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया पे, जहाँ भी, वो भी साथ साथ हमें जो मैसेजेस करते हैं, उनके मैसेजेस भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी सनराइज रेडियो को ट्यून इन कर रखा है और सुन रहे हैं, तो फिर जनाब आप भी हमारे जो हवा पे बिखरती हुई हमारी आवाज़ जो जहाँ कहीं भी जा रही है, जिस किसी के दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रही है, कोई दरवाज़ा खोले या ना खोले, और वो सब जो हमें सुन रहे हैं सनराइज रेडियो पे, और उसके अलावा जो बाकी दोस्त हमें सुनते हैं, जैसे कैसे भी आप सब शामिल हैं जनाब, इस महफिल का हिस्सा हैं, और महफिल की जान आप हैं, महफिल की शान आप हैं। और जनाब ये बात हमने हर बार कही है, पहली पहली बार नहीं कही है, हम तो कहते रहेंगे, आप भी कुछ कह सकते हैं, अगर पहले कभी नहीं कहा, आपके दिल में कुछ होता है, आपको कोई बात अच्छी लगती है, तो जरूर कॉल कीजिएगा, वरना जबरदस्ती कोई नहीं। हमेशा कहता हूँ अपना काम काज करते रहें, हमारे साथ साथ रहें, बस खुश रहें अपने खर्चे पे।

0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

सुन रहे हैं अपना सनराइजर रेडियो और मैं हूं आपका अपना काशिफ। वेलकम बैक, आपको कहते हैं ब्रेक के बाद। और जनाब आपकी बातों का जादू अब हमारी आवाज में छलकेगा, झलकेगा, क्योंकि जनाब चाबी लगाना शुरू कर दी है आपने। वो जो चाबी बरते हैं ना, आप कॉल्स करते हैं मुझे और बिल्कुल वो चार्जिंग जो है ना वो अभी पूरी हो रही है। 90% चार्जिंग हो गई है हमारी, 10% रह गई है अभी। जनाब कॉलर आए हमारे साथ आसम भाई। आसम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का दोस्तों, और आपसे डिटेल में गपशप हुई। आपने जो बात छेड़ दी थी ना, उसके बाद हमने घड़ी की तरफ देखना छोड़ दिया और आपको भी बताया कि जनाब आराम से आज आपसे बात करूंगा जो बात आपने छेड़ी है, क्योंकि दोस्त दोस्त वही होता है जब आपका कोई अपना डाउन हो, कोई थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा उदास हो, या थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा हो, थोड़ा सा भटक रहा हो और ट्रैक से उतर रहा हो, तो आपका जो दोस्त होता है ना, सच्चे दोस्त, वो आपको थामते हैं, आपको ट्रैक पे वापस लाते हैं, आपका हौसला बनते हैं, कभी छोड़ते नहीं आपका साथ ऐसे मौके पे खास तौर पे। तो जनाब आज आसम भाई को हमारी जरूरत थी, उनको हमने दी आज जादू की जब्फी टाइट करके कोट के है ना आसम भाई, जादू की जब्फी ने बताएं काम अगर नहीं किया ना तो आप सरेआम आके बताएं जनाब, और अगर काम किया है, जो कि आपके साथ लंबी सी एक गपशप हुई हमारी और उसके बाद जब हम आपको गुड बाय कहने वाले थे उस वक्त आपकी आवाज़ डिफरेंट थी, जब आपने कॉल की तो काफ़ी डाउन डाउन थे आप। खैर हमारा काम हो गया, हमारा फ़र्ज था एक दोस्त के लिए, जो दोस्त का फ़र्ज होता है वो हमने निभाया और दिल से निभाया, और आपने जब बात शुरू की ना तो दिल में जाके लगी मुझे आपकी बातें भी, आपको पता है कौन सी, और आपके अल्फाज भी और आपकी आवाज़ भी, क्योंकि ऐसे हमारी गपशप अमूमन होती नहीं है। हमारी अमूमन गपशप गपशप में होती है, हंसी मजाक में होती है, शुगल में होती है, और हम हो यहाँ पे आपके लिए 3 घंटे के लिए, और इसमें कोई गम आपको सताए, आपकी कोई परेशानी या कोई डिप्रेशन आपका या एंग्जाइटी या स्ट्रेस आपके आसपास भी आए, तो फिर काशिफ ठंडा पानी पी के मर क्यों ना जाए। अगर काशिफ के होते हुए आपको कोई स्ट्रेस आ जाए इन 3 घंटों में, आप हमें आगे चाबी भरते हैं 3 घंटे के लिए। हजूर जो नियत मैं लेके आता हूं ना, मैं चाबी भरने आता हूं आपको पूरे हफ्ते के लिए। जी जनाब, और ये जनाब जादू की जप्पी सिर्फ आसम भाई के लिए नहीं, आप सबके लिए भी होती है, क्योंकि हम गैर नहीं है जनाब, आपके अपने हैं, हम यार हैं तुम्हारे, तुम मानो या ना मानो दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, दिलदार है तुम्हारे, ना यूं अपने दिल को सताया करो, हमसे मिला करो,

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब बिल्कुल, मैंने भी अब प्यार कर लिया है, हो गया है। अब प्यार अगर एक जुर्म है तो जनाब सजा दे सकते हैं आप हमें जो भी चाहें। प्यार हो जाता है और जब प्यार हो जाता है तो फिर उस पर इख्तियार नहीं हो सकता। प्यार अंधा होता है। तो अब आपसे हमें प्यार हो गया है जनाब, अब ये अलान भी कह रहे हैं, ज़माने के सामने भी कह रहे हैं और सबके सामने इसका इकरार कर रहे हैं। अब आप को अगर होगा तो आप बताइएगा या छुपाइएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, अब इस बात को लेके आप हंसें, मुस्कुराएं या कंध में सिर मारें अपना, या अपना माथा पकड़ लें जनाब अपने हाथों से कि काशिफ को प्यार हुआ और इसने ज़माने के सामने इकरार किया। जनाब आप सबसे प्यार हो गया है, अब नहीं मेरे बस में नहीं है। ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ मेरे बस में है कि आपको टाइम बताया जाए, क्योंकि आप टाइम के मुताबिक सारे काम करते हैं, हांडी रोटी से लेके मुझसे बात करने तक सब आपका टाइम से ताल्लुक है। मेरी तरह आए बाएं शाएं तो नहीं होता ना आपका दिन। मैं ना तो हमें ना तो टाइम की ज़रूरत होती है ना फिक्र होती है, हम चलते हैं वो क्या कहते हैं अल्लाह तवक्कल। तो घड़ी के साथ जनाब जो चलते हैं लोग, उनको घड़ी घड़ी टाइम बताना पड़ता है। टाइम हो गया है जनाब दिन के 2:50।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
5: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतों ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
4: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
5: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274-464-446.
6: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

और ओए ओए आपने सुनी होगी हैप्पी बर्थडे का गाना, क्योंकि जनाब एक साथ अच्छा आज बड़ी ही कोई रोलर कोस्टर है, अप एंड डाउन चल रहा है सिलसिला। कुछ दोस्त आए, उन्होंने बड़ी अपनी परेशानियां अपना स्ट्रेस हमारे साथ शेयर किया और आई एम फीलिंग वेरी लकी ऑन द सेम टाइम आई एम रियली टच्ड एज वेल। लाइक आप मुझे अपना समझते हैं, अपनी परेशानी अपना स्ट्रेस अपना डिप्रेशन मेरे साथ शेयर करते हैं, ऐसा बड़ा कम होता है। कोई कोई एक आध कॉल आती है जो somebody from all the listeners somebody's feeling down and then they ring me and then I try to cheer them up because I listen to you complete tawajjo ke sath main aapko sunta hu. अच्छा होता क्या है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको किसी न किसी तरह आपका मूड या आपको कोई मिसालें एग्जांपल्स कोई दलील दे के आपको कायल किया जाए और आप उस डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकलें। लेकिन आज लगातार मुझे लगातार जितनी कॉल्स आई हैं अभी तक मैंने जिक्र सिर्फ आसम भाई का किया है, उसके बाद सोनिया की कॉल आई, शी इज़ फीलिंग बेट डाउन एज वेल, और उससे भी हमने 5 से 7 मिनट दिमाग लड़ाया है। और सोनिया आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ, ऑल ऑफ द एडवाइजेज विच यू आई हैव गिवन टू यू यू गोना टेक देम ऑन बोर्ड एंड होपफुली यू विल फील बेटर। मीन टाइम जनाब हैप्पी बर्थडे के लिए, अलीशा खान की बर्थडे थी कल और वो बेटी हैं हमारे प्यारे से खान साहिब की और उनको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू अलीशा खान फ्रॉम योर डैड खान साहिब एंड ऑल ऑफ द लिसनर्स एंड सनराइज रेडियो की टीम। आपको बर्थडे की विशेज जनाब, ढेर सारी दुआएं आपके लिए। और सोनिया के बेटे हैं जनाब, थर्सडे को वो उनकी बर्थडे है, सोनिया आपके बेटे के लिए हैप्पी बर्थडे। And if you are celebrating your birthday today or during this week,

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की जो घड़ी है वो बता रही है कि टाइम हो चुका है इस वक्त 3:08 हो गए हैं जनाब दिन के।

जी जनाब, वेलकम बैक और बैक टू वेलकम आपका हो गया। मैं हूं आपका अपना काशिफ और आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पे। आप हमें सुनते हैं यॉर्कशायर की वादियों में और दुनिया भर में आप हमें सुनते हैं जनाब सनराइज रेडियो .fm के जरिए, गूगल और एप्पल ऐप स्टोर के जरिए। And if you are streaming on TikTok live or thinking about getting started, join the Sunrise Creator Network, a UK TikTok live agency, helping creators grow their audience, develop their brand, and get promoted on Sunrise Radio. To find out more and apply, visit the Sunrise Creator Network page at www.sunrise.radio. That's www.sunrise.radio. अच्छा जनाब, अब जो मेरे सामने वो जो होता है, एक पेज होता है, वर्क का होता है, वो जनाब अब हो गया है फुल। अब इस वर्क को, इस पेज को हमने दूसरी साइड इसकी, वो जो किसको क्या कहते हैं, परताना है ये पेज जो है ना, एक साइड से सारा भर गया। अब इसकी दूसरी साइड हमने उस पर लिखना शुरू करना है, लेकिन पहले इस साइड पे जितना उदहार है आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का, आपके खलूस का, आपके वक्त का, आपकी उन चंद कीमती घड़ियों का जो आपने हमारे नाम करके उनको खूबसूरत बना दिया, उन लम्हों को हमारे लिए यादगार बना दिया, वो लम्हे जो हमारी कमाई होते हैं यहाँ पे आपके साथ मुखातब होने के लिए, ये वो उस कमाई का हिस्सा होते हैं, वो लम्हे जो आप हमें कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं। जी जनाब, मैं हूं आपका काशिफ और 3 घंटे की महफिल। और अभी जो आखिरी कॉल हमें आई, नहीं आखिरी कॉल तो तारिक जुल्फी भाई की थी। तारिक जुल्फी भाई ने गुजारिश की हमें, जनाब आपकी गुजारिश सर आंखों पे, और जनाब आपके सभी दोस्तों के नाम आने वाला खूबसूरत सा गीत होगा। और आप भी हमारा शो शुरू से लेके आखिर तक सुनते हैं, जैसे साजिद भाई हेलीफैक्स से हमारे साथ शामिल थे। और कमाल है जनाब, आपने आपने हमें कहा कि आपके दिल के तार आज की हमारी बातें सुन के और हमारे गीतों को सुन के आपके दिल के तार छिड़ गए हैं। आपने कहा कि हम आपके दिल के तारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अच्छा लगा जान के जनाब, हमें लगा था कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं और आप हमारे दिल के तारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपनी खूबसूरत खट्टी मीठी बातें करके हमें अपना दीवाना बनाते हैं। हमें लगा कि ये जो मीठी मीठी बातें आप हमारे साथ करते हैं, ये मीठी मीठी बातें करके शायद हमारे दिल के तार ही छिड़ जाते हैं और आप चाबी भरते हैं हमें, और फिर इसके बाद हमारे रंग ढंग देखते हैं और फिर मजे लूटते हैं आप। लेकिन जनाब होता क्या है कि कहते हैं ताली दो हाथों से बजती है, और ये इकरारे जुर्म साजिद भाई ने हेलीफैक्स से आके किया कि जनाब उनके दिल में कुछ कुछ होता है, हमारी बातें उनको मीठी लगती हैं। चलें जनाब, दुआ है कि आप डायबिटिक ना हो जाएं, ज्यादा मीठा अच्छा नहीं होता है। आप हंस रहे हैं मुसमुस करके, हाय हमें कैसे पता, सब कुछ बता दें, हाथ पांव ही कटवा दें जनाब।

बड़े भाई हैं हमारे जनाब, उनके नाम, उनके सुनने वाले, जानने वाले, उनके सभी दोस्तों के नाम ये खूबसूरत सा गीत होगा। अच्छा, बातें करने वाला जनाब जैसी भी बातें करे, मीठी मीठी बातें आपको लगती हैं, लेकिन सुनने वाले की अगर समात, सुनने वाले की सुनने की जो हिस है, जैसे आप सब, अगर वो मीठी हो तो मेरे जैसा नाचीज बंदा कुछ भी कह जाए, ऐसे बेकार की बातें भी कर जाऊं मैं तो आपको मीठी लगती हैं। तो कमाल जनाब सुनने वाले का भी होता है। अच्छा आयशा जी, आपने कॉल की और आपने, अच्छा आज जितनी भी कॉल्स मुझे शुरू में आई हैं और शो के नहीं जनाब, हाय जनाब, आवर के एंड तक सभी आज स्ट्रेस में चल रहे थे। और आशा जी ने खास तौर पे कहा कि काशिव आज रोमांटिक गीत या गमगीन गाना ना लगाना, पहले ही हम बड़े स्ट्रेस में हैं, आपने अपने स्ट्रेस को भी हमारे साथ शेयर किया। अच्छा ऐसा, इतने सालों से हम सनराइज पे आते हैं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जितनी भी कॉल्स मुझे आई पहले आवर में सारी स्ट्रेस से रिलेटेड थी, डिप्रेशन से रिलेटेड थी। अच्छा समझ नहीं आ रही कि मौसम भी इतना प्यारा है, चमकती धूप है, मौसम होता है ना ग्रे ग्रे मौसम हो, बादल हो, ऐसे मिजरेबल सा वेदर हो तो बंदा मान भी लेता है। खैर सोनिया की परेशानी हमने दूर की, बहुत सारे मशवरे दिए उनको, आयशा जी के भी मशवरे दिए। यूजली होता क्या है, आयशा हमें मशवरा देती हैं, लेकिन आज हमने उनको कुछ मशवरे दिए हैं। और आशा जी रब ते छड़ दिया करो तुसी, बिल्कुल ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह पाक, अपने क्रिएटर, अपने रब के, जिसने दुनिया बनाई है, जो दुनिया का निजाम चलाता है, समंदर की तहों में जो मछलियों को पालता है, जो पत्थर के अंदर तक जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां कीड़े को खुराक देता है, परिंदों को वो पालता है, दरख्तों को वो फल लगाता है, बादलों की बारिश, बारिश से जनाब हवा और हवा से ऑक्सीजन, जमीन जमीन पे घास, पौधे, फूल, पत्ते, इंसान, जिसने इतना सारा निजाम चलाया है। और हम कोशिश करते हैं कि जनाब प्रॉपर्टीज बना के, बैंक बैलेंस बना के, वड्डी गड्डी शोखी सी लेके, गर्दन में थोड़ा सा सरिया लगा के, थोड़ा सी गर्दन अकड़ा के, ये फिक्के और गाढ़े रंगों के सूट बूट पहन के, और ये सोने चांदी की जेवर ज्वेलरी बना के, हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। लेकिन जनाब जब बंदा दुनिया से जाता है तो सबसे पहले उसी के घर वाले, उसी सोने चांदी से बने हुए कंगन जेवर उतारते हुए हमने खुद देखा है, बंदे को वो दफन कराते हैं मिट्टी के सपुर्द, और सोने चांदी से बने हुए जेवर संभाल लेते हैं, और फिर उस पर बहस होती है कि ये कंगन मेरे हैं और ये सेट अम्मा जी का, बाजी का, ये मेरा है। आपके कपड़े तक जनाब दे दिए जाते हैं चैरिटी में, समझ गए। तो ये सब कुछ आरजी हो।

0: you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
1: और नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274 491 442।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
4: अच्छा जनाब, आपकी जो मोहब्बत है उसका मैं उधार नहीं चढ़ने दे रहा ना। मसला यह है कि आपकी कॉल्स की रफ्तार ज्यादा है और हमारे पास जो टाइम होता है ब्रेक्स और गानों के बाद, वो टाइम बड़ा कम बचता है। उसको किसी ना किसी तरह मैंने उसको कवर करना है, ताकि जो दोस्त कॉल अभी करते हैं उनका नाम अगर मैं 2 घंटों बाद या सुबह कल जाके लूँगा तो फिर माड़ी बात हो जाती है ना। तो अभी जनाब 100% चार्जिंग आपने कर दी है हमारी और बिल्कुल मूड 100% आपने कर दिया है। क्रेडिट आपका है, अब आप भुगतेंगे। जनाब अच्छा, कॉल सबकी मेरे सर आंखों पे होती है, आप सब बड़े मुझे बड़े अजीज हैं, वरना 3 सेकंड आजकल 3 मिनट कोई नहीं देता है और हम 3 घंटे आपको देते हैं, आप माने या ना माने। वहम का तो इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं था, मैं तो काशिफ हूँ, वो भी माड़ा सा। बिल्कुल जनाब, आपका अपना काशिफ आपके अपने सनराइज रेडियो पे, 3 घंटे का साथ आपका और हमारा। जैसे साजिद भाई आए, उन्होंने कहा ना, काशिफ भाई 1 घंटे का पता ही नहीं लगा, और वाकई जनाब 1 घंटे का पता नहीं लगा। अच्छा जनाब, कुछ कॉल्स ऐसी भी होती हैं, आप सबकी कॉल्स बड़ी प्यारी, लेकिन कुछ हमारे सीनियर्स हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा वो अब अपने 70s में हैं। सुल्तान महमूद, वो भी रेडियो उन्होंने 1970 में शुरू किया था और बहुत दोस्त उनको जानते हैं, और जब ऐसे सीनियर्स हमारे आके हमें कॉल करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कॉल ना मिले तो गिव अप नहीं करते हैं, जब तक अपना वो इनपुट नहीं दे देते हमारी इस महफिल में शामिल होके, क्योंकि उनको पता है कि जब तक, जब इनका एक्सपीरियंस इनको, उनको पता होता है कि एक एंटरटेनर जो प्रेजेंटर होता है, जब तक उससे बात वो सुन नहीं लेगा तब तक वो अल्फाज उसको वो जादूगरी होगी नहीं, हौसला नहीं बढ़ेगा, दिल बड़ा नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूँ हमारा जो फ्यूल होता है जिसपे हम चलते हैं, वो आपकी हौसला अफजाई, आपके मीठे बोल जो आप हमें कॉल करके

यही हमारा हमारी एक वो जो है ना कहते हैं ना, कोई भी आपको टैक्सी आप करते हैं, आप ट्रेन टिकट लेते हैं, हवाई जहाज का टिकट लेते हैं, तो आपको कुछ मुआवजा देना पड़ता है, तो उसके बदले आपको वो चीज़ें मिलती हैं। शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ भी आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमारी जो आप हमें पेमेंट करते हैं वो ये आपके मीठे बोल होते हैं, हमारा मुआवजा, हमारी उजरत जो आप हमें देते हैं आपको एंटरटेन मीठे बोल सुनाने के बदले में, वो ये होता है, ये बनता है, ये देना चाहिए। जो लोग समझते हैं वो ज़रूर इसका हक अदा करते हैं, कॉल करते हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं रहते, शामिल होते हैं, अब चाहे दो बोल ही कहें। तो जनाब मेरे लिए कुछ कॉल्स एक सर्टिफिकेट की तरह होती हैं, एक सनद की तरह होती हैं। जब हमारे सीनियर्स हमें कॉल करते हैं और बताते हैं कि उनको कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ हमारे अंदाज़, यहाँ हमारे अल्फाज का तार चढ़ाओ, वो कैसे नोट करते हैं, महसूस करते हैं, उसको जांचते हैं, उसको तोलते हैं, उसको परखते हैं, तो फिर जब आके वो जनाब उसका पूरा एक्सरे करने के बाद हमसे बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें किसी हद तक वो हमें फुल मार्क्स देते हैं। मैं फुल मार्क्स काउंट नहीं करता, लेकिन आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो एक्नॉलेजमेंट है, रब इसके लिए आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप हम पे साया शफकत बन के इसी तरह रहें, और हमें अपनी गाइडेंस से, अपने गोल्डन वर्ड से ऐसे ही नवाजते रहें, और हमारा फ्यूल जो है ना, वो टंकी जो है ना गड्डी की वो फुल रहे, और हम रब की मखलूक को जो इंटरटेन करने का एक मकसद लिया है हमने, आपकी ज़बानी मैं कहूँगा, जो आपने कहा कि हमारी एक जॉब है जो रब ने हमें दी है एंटरटेन करने की, तो उसको हम बखूबी निभाते रहें जनाब। अच्छा, कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जिनसे बात करके ना दिल नहीं भरता, ऐसे ना बात खटाई में चली जाती है। कॉल आपने की और अभी हमने माशाल्लाह कहा ही था आपके लिए, आपने माशाल्लाह कहा था हमारे लिए, फिर भी नजर लगी। कहते हैं माशाल्लाह कहें तो नजर नहीं लगती जनाब। उज़्मा आपकी बात कर रहा हूं, आपने कॉल की, आपसे बात हुई, आपका अंदाज, आपकी आवाज, आपके अल्फाज, और आपने जो बात शुरू ही की थी, अभी हमें मजा आया ही था जनाब आपकी बात का। उधर आपने माशाल्लाह कहा कि आपने हमें देखा, आपने सुना, आपने कहा कि आपने कुछ इमेज कुछ और बना रखा था, फिर आपने हमें टिकटॉक पे ढूंढा, फिर आपने टिकटॉक पे हमें देखा। अच्छा, मैं ऐसे ना हक्का बक्का रह गया कि पता नहीं आपकी उम्मीदें खटाई में चली गई, खाई में चली गई, लेकिन फिर आपने कहा माशाल्लाह जैसा इमेज था उससे ज़्यादा अच्छा पाया। तो जनाब तारीफ रब की है, और ये हुसन, ये ज़ाहरी खूबसूरती, औरतों की तरह हम मेकअप करके उसको चार चांद तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जैसा रब ने बनाया खूब बनाया, सबको जिसने रब बनाने वाले ने तख्लीक किया, खालक ने बनाया ही इतना प्यारा सबको, उसकी तख्लीक है ही इतनी प्यारी, हर एक तख्लीक जो दुनिया में है इंसान के अलावा भी, हर शय उसकी वो बड़ाई बयान करती है, कुदरत बयान करती है, उसकी तारीफ बयान करती है। तो ये आपकी नज़र का भी हुसन है, जैसे मैंने सुनने वालों के लिए कहा था आगे, कि सुनने वाले भी की सुनने की वो जो है ना हिस, उसका हुसन होता है, मेरी बातें इतनी ख़ास नहीं होती हैं, इसी तरह आपके देखने का हुसन, आपकी आंखें प्यारी होंगी यकीनन, कि आपको मेरे जैसा नाचीज़ बंदा प्यारा लगा। बहरहाल कहते हैं किसी को नज़र ना लगे तो वो ऐसे उसकी तरफ देख के थू करना चाहिए तो आप अपने फ़ोन पे बराए करम जब टिकटॉक हमारी खोलेंगे, हम आपके सामने जब आते हैं तो अपने फ़ोन पे एक दो बार थू कर दिया करें ताकि हमें नज़र ना लगे। आपका फ़ोन तो साफ हो जाएगा, हम नज़र लगने से बच जाएंगे।
तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो माशाल्लाह कह दिया करें, जैसे आंटी दीवा हमें सुनती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कहती हैं जी, माशाल्लाह कह दिया करें।

0: जी जनाब, आंटी दीपा कहती हैं कि पुत्र मैं आज पकौड़े बनाने लगी हाँ, तो आलूआं की नमक वाले पानी च सीढ़ी कर रखसा 10 मिनट, फिर इसना फायदा ये होना कि आलूआं ने अंदर थोड़ी नमक चला चला जाना, तो फिर पकौड़े मजे ने पकसन। तो आंटी बिच आज दाल बनाई है आंटी दीपा, ठीक हो गया जी?
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
4: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274-644-46.
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

0: सुन के, आपसे बात करके, आप सबकी मोहब्बत में जनाब आपके अपने काशिफ का दिल बिल्कुल डूबा। अच्छा जनाब, हमारे साथ सामिया, आपको पता है, हमेशा शामिल होती हैं, बड़ा मजा आता है। और सामिया की बातें, क्या क्या बातें करती हैं, कमाल करती हैं आप, दमाल करती हैं आप। बड़ा अच्छा लगता है हमेशा आपकी आवाज सुन के भी, और आपकी जो बातें होती हैं बड़े हौसला अफजाई आप करती हैं हमारी। और आज आपने कोई नहर वाले पुल पे, आप कहती हैं कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते माही पता नहीं किथे रह गया। खैर जो जनाब, हमें देखना होगा क्योंकि कॉल्स बहुत सारी हमारे साथ थी और मुझे टाइम ही नहीं मिले है जनाब। हाँ, नहर वाले पुल ते जनाब लेके जाएंगे माही को हम ढूंढ डांट के, क्योंकि सामिया जो है ना वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो बड़ी नाराज हैं। वो कहती हैं कि नहर वाले पुल ते बुला के माही पता नहीं किथे रह गया। चले जनाब, हमने माही को ढूंढ लिया। अब टमटम में हम डालते हैं नहर वाले पुल का वो जो पोस्ट कोड और देखते हैं। बिल्कुल जनाब, नहर वाले पुल का अगर पोस्ट कोड आपको पता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं ताकि उसको टमटम में डालूं और माही को हम साथ लेके कान से पकड़ेंगे और उसको नहर वाले पुल पे पहुंचाएंगे। अभी थोड़ी देर में फ्लैशबैक में क्लासिक गेट ऑफ द आवर जब चल रहा होगा तो माही जनाब पुल पे होगा। ठीक हो गया, चले ये स्यापा तो मुक गया जनाब, सामिया का मसला हल हो गया। बाकी जनाब खास तौर पे BD5 वाले महबूब भाई और तारिक जुल्फी भाई के नाम गाना होगा सुल्तान महमूद जी की तरफ से और उनके सारे दोस्तों की तरफ से ये खूबसूरत सा गीत। और अच्छा जी, यही कहेंगे नित ना सही। और हमें एक अननोन कॉलर आए और हमने खुश होकर हमने सोचा कि उज़्मा जहाँ पे छोड़ के गई थी बात, हमारे पेट में मरोड़ उठते रहेंगे क्योंकि तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती है। तो अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा हो और अधूरी रह जाए तारीफ, तो पेट में मरोड़ तो उठेंगे, जो सच्ची बात है। तो वो जो जनाब नंबर नहीं था और हमने सोचा कि शायद ये उज़्मा जी की कॉल है, और लेकिन जनाब वो एक और कॉलर थी और उन्होंने जनाब हमें कहा कि काशिफ आप जोक या बातें आप सुनाते हैं तो ख्वातीन के मेकअप के बारे में आप हाथ पांव धो के पड़ गए हैं पीछे, मर्द भी आजकल मेकअप करते हैं। अच्छा, पर ये आपको कैसे पता मर्दों के बारे में इतना, है ना, ये सवाल मेरे जहन में अभी आया, उस वक्त आपसे पूछना याद नहीं रहा। लेकिन जनाब ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ ख्वातीन के बारे में ही जोक्स होते हैं सारे। जनाब ख्वातीन हमारी सारी आंखों पे होती हैं। अच्छा आपको बताऊं कि बात ये है कि चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, कोई भी रिश्ता हो, ख्वातीन का बड़े ही हमारे लिए मोहतरम होती हैं। ख़ास तौर पे मुझे कॉलर आए थे साथ मेरे लास्ट आवर में, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, खान साहब, उन्होंने वो मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपनी बेटियों बेटी के साथ, एक और साहब आते हैं साजिद भाई, उनकी बेटियाँ उनके साथ होती हैं, बेगम उनकी है, उनके साथ होती हैं, मतलब पूरी फैमिली की फैमिलीज जब हमें सुनती हैं, ख़ास तौर पे अपनी बेगम के साथ कोई सुन रहा होता है, कोई अपनी बेटियों के साथ सुन रहा होता है और फ़ख्र से हमें कॉल करते हैं कि काशिफ आपको सुन रहे हैं। और फिर देखें वो आपको एक एंटरटेन करना और एक एक बाउंड्रीज के अंदर रह के समझने वाले समझते हैं, और इस तरीके से आपको एंटरटेन करना, ये जहन में हमारे चल रहा होता है कि हमारी माएँ बहनें बेटियां सबकी अपनी अपनी बेगम जनाब हमें सुन रही होती हैं, उनके साथ बैठी हुई बराबर में ड्राइविंग सीट पे शॉपिंग करते हुए या कहीं से आते जाते, तो एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, एंटरटेन भी करना होता है और इस तरह से बात करनी होती है कि किसी भी ख्वातीन में से किसी को ऑकवर्ड ना लगे। तो जनाब दिल पे ना लिया करें, आपने भी लाइट नोट पे बात की थी हंसते मुस्कुराते कि आप जनाब मर्दों की शान में भी कोई बात कहा करें, आप वन साइडेड हो के जोक्स सुनाते हैं तो हमें लगता है कि आप, जी हाँ जो भी आपने कहा अंग्रेजी में जनाब हम समझ गए। अच्छा जनाब, जैसा मैंने कहा कि फैमिली साथ में मिलके सुनती हैं, साथ में ख़वातीन उनके घर की होती हैं, तो अच्छा ये बड़ा एक अच्छा मुझे लगता है, बड़ा प्राउड होता है एक कॉलर ने जो नाम नहीं बताया, जो उन्होंने जो भी अंग्रेजी में कहा उससे आपने बात को एक हमारे दिल में जो बात होती है, जो जहन में बात होती है, वो हमें मौका मिल गया। अच्छा जब हम अपने घर की ख्वातीन के सामने, ख़ास तौर पे जब आप मियाँ बीवी बैठ के दोस्तों की तरह एंटरटेन होते हैं या एंजॉय करते हैं, कोई मूवी देखना, कोई खाना खाना, कोई कुकिंग करना, कोई घर की जनाब साफ़ सुथराई में वीकेंड पे हाथ बटाना अपनी बेगम का या अपनी बहनों का या अपनी बेटियों का, तो ये एक तासुर छोड़ता है आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए, जिसने कल अगले घर जाना है, कि जनाब मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब ख्वातीन भी खुश होंगी मेरी ये बात सुन के, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मर्दों में कि जो जिन्होंने अभी दुनिया देखने के बावजूद दुनिया नहीं देखी होती है, अगर आप अपनी बेगम के साथ गुस्से में, तलखी में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस हर बंदे को होता है, और आप अपने घर में जाके बाहर का रोला स्यापा अपनी बेगम को अगर आप कोई नाज़ेबा अल्फाज में मुखातब करेंगे, चिड़चिड़े हो के बात करेंगे या गाली गलोच तक बात जाती है, हमने देखा है ज़माने में, तो यकीन करें आपकी बेटियां या आपकी बेटी जब वो देखती है और उसमें जब वो ग्रो करती है, जब उसकी परवरिश उस माहौल में होती है ना, तो आपकी बेटी समझती है कि ये नॉर्मल है कि हस्बैंड का अपनी बीवी को नाज़ेबा अल्फाज कहना गुस्से में या गाली गलोच करना या इस तरह से मुखातब करना, तो आपकी अपनी बेटी ये समझेगी कि शायद ये नॉर्मल है, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। और फिर आप ये सोचें तो आपके कलेजे को हाथ पड़ेगा। आप ये सोचें, एक बार इमेजिन करें कि आपकी बेटी अगले घर जाए और उसका हस्बैंड अल्लाह ना करे इस तरह से जब उसको मुखातब करेगा गाली गलोच या नाज़ेबा या चिड़चिड़े अंदाज से या माथे पे बल डाल के या सख्त लहजे में, तो आपकी बेटी ये समझेगी, रब ना करे, कि ये नॉर्मल है, जो कि कतन एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, कतन नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन आपकी बेटी क्योंकि इस माहौल में परवरिश पाई है अपने बाप को देख के, सारी ज़िंदगी अपनी माँ को ऐसे मुखातब होते हुए अपने बाप से, तो वो ये समझेगी कि शायद ऐसे ही होता है, हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। तो ज़रा सोचें कि वो भी इस चीज़ को जब नॉर्मल फील करेगी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ।
1: हम तुमको
0: तो ख़वातीन का एहतराम ज़रूरी है, सबसे पहले अपने घर से बाहर किसी की और की माँ बहन बेटी को आप इज्जत दें, लेकिन अपने घर में चिराग तले अंधेरा रहे तो फिर आपकी नमाजों का, आपकी अच्छाइयों का,
1: तुम चाहे
0: आपकी दीन की बाकी बातों पे अमल करने का, अपने अपने रिलीजन का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अपने घर में आपकी अपनी माँ बहन बेटी या बीवी महफूज और खुश महफूज महसूस ना करे,

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, तुम बचो जितना भी, हम तुमको निगाहों में और दिल में बसा लेंगे। कर लो जितना जोर आपका चलता है ना, अपने दिल पे चला लें। ये काशिफ जनाब आपको आप ही के दिल में अपनी मोहब्बत जगा के छोड़ेगा और जनाब आपको अपनी दुआओं में और निगाहों में बसा के फिर कभी नहीं छोड़ेगा। तो जनाब बातें होती रहेंगी इसी तरह मीठी मीठी, जैसे आंटी दीबा जी ने कहा कि रसगुल्ले की तरह की बातें। बहुत शुक्रिया आंटी दीवा जी, आप खुद पकोड़े खाएं और हमें आप डायबिटिक करने के बंदोबस्त कर रहे हैं, रसगुल्ले और इस तरह की बातें कर रही हैं। और जनाब हमारे साथ आयशा रही, उन्होंने कहा काशिफ आपने हमारा नाम नहीं लिया। मैंने जनाब आयशा आयशा इतनी बार कहा कि आपका नाम थोड़ा सा घिस भी गया, लेकिन फिर लेता हूँ और आने वाला गाना आपके नाम होगा और उसके बाद नेक्स्ट आवर का पहला गाना धूम धड़क्के वाला आपने कहा है वो होगा आपके नाम। खान साहब हमारे साथ कॉल पे हैं और बाकी कॉलर्स उनके साथ गपशप करते हैं, लेकिन पहले
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
7: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, तो सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है 4:07. 4:07.

हैं सनराइज रेडियो 103.2 एफएम पे, 100.6 एफएम पे भी आप हमें सुनते हैं योक्षे की वादियों में, और इसके अलावा सनराइज रेडियो .fm के जरिए आप हमें सुनते हैं गूगल पे और एप्पल ऐप स्टोर के जरिए, एंड इफ यू आर स्ट्रीमिंग ऑन टिकटॉक लाइव और थिंकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, जॉइन द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क, अ यूके टिकटॉक लाइव एजेंसी हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो देयर ऑडियंस, डेवलप देयर ब्रांड एंड गेट प्रमोटेड ऑन सनराइज रेडियो. To find out more and apply, visit the Sunrise Creator Network page at www.sunrise.radio. That's www.sunrise.radio.

और जनाब मैं हूं आपका अपना काशिफ जी। जनाब तीन घंटे का साथ आन पहुंचे अपने आखिरी घंटे में, अपने आखिरी घंटे में नहीं जनाब, आज की इस महफिल के, आज के इस शो के आखिरी आवर में आन पहुंचे हैं। और यकीन माने पता ही नहीं लगा, आपको पता लगा? नहीं पता लगा ना?

जनाब कॉल आई हमें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने कहा कि धूम धड़क्के वाले गाने बिल्कुल, अभी जो कॉलर आई थी जो आयशा जी ने कहा था, आपने हाँ में हाँ मिलाई, आपने नाम नहीं बताया, आपने कहा जी कुछ मौसम भी कुछ ऐसा है और हमारा मूड भी ऐसा है, आप धूम धड़क्के वाले गाने लगा दें। चलें जनाब, नाम अच्छा रखा आपने वैसे, या आपने हमसे पिक किया या आयशा जी से, धूम धड़क्के वाले लगाते हैं जनाब।

आरा से आपने कहा कि आपकी बेटी खास तौर पे हमें शुक्रिया कह रही है जनाब, हमारी भतीजी हैं वो और हमारे बहुत सारे जितने भी मैंने आगे अर्ज किया कि ख्वातीन मर्द हजरात छोटे बड़े जो भी हमें सुनते हैं, हमारे लिए आप एक बराबर सर आंखों पे हैं और हम मर्दों के साथ कभी ऐसा होता है कि हम मल्टीटास्क नहीं होते हैं ख्वातीन की तरह, है ना, हम दो काम एक टाइम पे कर ही नहीं सकते हैं, ये बात तो हम मानते हैं। जनाब धूम धड़के वाले गाने लगाएंगे लेकिन पहले आपको जनाब बहुत सारी यादें ताज़ा होंगी आपकी इस गीत के साथ। सामिया आज जनाब जितने भी धूम धड़के वाले गाने हैं सामिया ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है, साथ साथ हमें गाने बताती जा रही हैं और हम प्ले करते जा रहे हैं। कहती हैं मज़े से चाय पी रही हूँ और कहती हैं कि चाय में मीठा डालने की आज काशिफ ज़रूरत ही नहीं रही, तो मैंने कहा वो क्यों, कहती हैं आपको सुन रही हूँ आपकी बातें ही काफ़ी हैं, कमाल है सामिया। सामिया जैसे मैंने कहा देखने वाले की नज़र खूबसूरत हो, सुनने वाले की समात और कान खूबसूरत हो और चाय पीने वाले के होंठ और या फिर चाय बनाने वाले के हाथ खूबसूरत हों, तो जनाब चाय मीठी लगती है। अब चाय पीने वाले का अंदाज भी तो खूबसूरत हो सकता है या फिर जड़ी पत्ती तुसी ले आंदे हो वो बड़ी कोई काबिल है जनाब, तुहानू मिठा पाण दी लोड़ ही नहीं रहिंदी। अब सामिया जनाब जोर जोर से हंस रही हैं और बताओ मुझे चाय पी रही हूँ और मीठा डालने की ज़रूरत नहीं। जनाब गाना है ये सामिया की पसंद का, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। हाय हाय हाय कुछ याद आया अच्छा जनाब बात कर रहा था कि हम जो मर्द हज़रात होते हैं ना हम मल्टीटास्क नहीं होते हैं, ख्वातीन तो बहुत ज़हीन होती हैं ना जनाब, वो तो बादाम भी नहीं खाती हैं, ये बादाम रात को भगो भगो कि सुबह निहार मुँह खाली पेट जो आठ आठ दस दस बादाम खाते हैं, ये हम मर्दों को खाने की ज़रूरत होती है। ख्वातीन का दिमाग जनाब बहुत तेज़ चलता है, जैसे कि हमारे एक दोस्त उनके साथ ये बात वाकया पेश आया, वो कहते हैं कि जनाब मार्केट में एक बार ना मार्केट में बाजार में शॉपिंग करते हुए एक औरत को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवा लेने के बाद, होता है ना ईद पे और इस तरह के मौक़ों पे या शादी ब्याह तो ख्वातीन बाहर जाती हैं जाके मेहंदी बकायदा किसी वो जो होती हैं डिज़ाइनर उनसे लगवाती हैं, तो उन्होंने जनाब दोनों हाथों पे भर भर के जनाब जब है मेहंदी लगवा ली तो वो दोनों हाथ मेहंदी से भरे हुए जब वो गाड़ी की तरफ आई और देखा कि ओह, उन्हें याद आया समझ आया कि अब मैं गाड़ी ड्राइव करके कैसे जाऊंगी, मैंने तो दोनों हाथों पे मेहंदी लगवा ली है। अच्छा वो परेशान खड़ी थी वहां पे और तभी उनके एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया वहां से गुजरते हुए और फिर उसी ने अपनी कार में उनको घर तक छोड़ दिया। अच्छा घर पहुंचने पर वो जो साहब थे पड़ोसी साहब उनको याद आया कि वो अपनी कार में पड़ोसन को तो घर छोड़ आए लेकिन अपनी बीवी को तो वो हाँ वो शॉपिंग के लिए छोड़ के आए थे और वो वहीं रह गई, पड़ोसन घर बीवी को बाजार ही छोड़ आए।

लेकिन जब आप आते हैं हमारे दिमाग को, हमारे दिल को लट्टू बना के घुमाते हैं, क्या करें, ना कहना आता ही नहीं हमें आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, दोबारा आप आए। और कवाली काश मैं लगा सकता, क्योंकि शो का फॉर्मेट ऐसा है इसमें कवालीज मैं लगा नहीं सकता, वरना मैं खुद बड़ा शौकीन हूँ, कवालीज सुनता हूँ। तो इसके जवाब में आपने कहा फिर आपको ये गाना लगाना ही पड़ेगा, अगर कवाली नहीं लगा सकते हैं तो ये गाना लगाएं। तो हमने कुछ और लगाना था, लेकिन अब आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका साथ इतना प्यारा है कि उसके सामने जनाब हमने जो सोचा, क्या सोचा, बहुत कुछ सोचते हैं। वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें काशिफ की, और हर ख्वाहिश पे ही उसका दम निकले। आप खुश, हम खुश, भीड़ में है, तन्हाई में है, जहां कहीं में है। ये गीत आपके लिए, आपके काशिफ की तरफ।

सोनिया आपका आपने खुदा हाफिज कहा, आपने बहुत सारी बातें की आज और हमारी बातों को भी याद रखिएगा। और अच्छा, जिंदगी की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप, जी हाँ, कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें जिनको हम देखते हैं, जिस तरह से इंसान है ना, हम समझते हैं इसमें हमारा नुकसान है या ऐसा हमारे साथ क्यों है, तो यकीन करें कुछ चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। जैसे कुछ लोग हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, इसी तरह कुछ चीज़ें हमारे लिए उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में उनको देखना चाहते हैं। ट्रस्ट योर क्रिएटर, अपने रब पे तवक्कल करें, अपने रब पे। यही आजमाइश इसी मौके पे ज़िंदगी में आती है इंसान की, और वसवसों की जंग होती है कि इसमें आपके वसवसे डालने वाला जो आपके साथ है, आपके अपनों के बारे में, आपके हालात के बारे में ज़िंदगी में चलते हुए वो जो शैतान वसवसे डालता है, उसकी जीत होगी या आपके तवक्कल की जीत होगी अपने रब पे। You can only try your best and leave the rest. I always say that I believe in my life. I follow this mantra, this line I actually follow in my life. I try my best and leave the rest to Rab. जो रब करे फिर उसके बाद अपनी कोशिश पूरी। एनीवेज, आसम भाई, आपको भी हमारी बात दिल को लगी होगी, आपकी बातें भी सर आंखों पे थी, सोनिया आपकी भी, और आयशा खान जी आपकी भी, साजिद भाई हैलिफैक्स आपकी भी, सुल्तान महमूद जी आपकी भी, तारिक जुल्फी जी बहुत शुक्रिया आपका भी। आंटी दीपा के पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए होंगे उम्मीद है, और मज़े से आप खाएंगी, इंजॉय करेंगी। हमें तो सोच के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन जनाब हीरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ निभाया। जिन दोस्तों ने नाम नहीं बताया और बहुत अच्छी प्यारी बातें की, उनका शुक्रिया। हलीम आपका शुक्रिया, खान साहिब आपका शुक्रिया, आपकी बेटी का शुक्रिया, और सामिया आपका शुक्रिया, और जनाब

सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये गीत आपको लेके जाएगा जनाब कहीं दूर। गौर से इसके बोल सुनिएगा आप, छोड़ें जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, बाकी सारी सोचें छोड़ें, इस गीत के बोल सुनिएगा। याद करिएगा आपको कोई कौन याद आता है सबसे पहले, कोई ऐसा जो आपसे जुदा हो गया हो, चंद पलों के लिए, चंद घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ सालों के लिए, कौन है वो जो याद आता है आपको? हमसे जुदा होके हम आपको तो याद नहीं आते होंगे, इतने खास हम होते तो क्या था कि आपकी यादों में हम बस जाते। कोई है खुश नसीब जो आपको याद आया होगा, ये बोल सुनिएगा और फिर बताइए।

0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
5: जी जनाब, जबरदस्त। अच्छा, जाते जाते हमें कॉल आई बर्मिंघम वालों की। बर्मिंघम वालों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने नाराजगी का इजहार किया। आपने कहा पकोड़ों वालों से पूछा आपने कि पकोड़े बनाए हैं कि नहीं, हमसे नहीं पूछा। तो आपने बताया कि आपने आज बनाए हैं कीमे वाले चावल और गोश्त साथ में बनाया है आपने, और साथ में कबाब भी हैं जनाब। ठीक हो गया, नाराज ना हुआ कर। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया मेरे लिए बेवफा। आपने कहा आप जब किसी और से खाने के बारे में पूछते हैं। अच्छा, मैंने नहीं पूछा ना, आंटी दीबा ने खुद ही बता दिया था। चले जनाब, एक और बंदे का इजाफा हो गया जो हमें बेवफा कहता है, और जिसके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो हमें बेवफा तो कहे, कुछ कहे तो सही। हाय। अच्छा जनाब, आमिर भाई की कॉल आई और उन्होंने कहा काशिफ भाई आपको सुनते हैं तो आपका चेहरा आंखों के सामने रहता है, और आपने कहा कि आपकी बातों में ढके छुपे फसाने होते हैं, कहानियां होती हैं, कुछ आप बीतियां होती हैं हम सबकी। तो आप कहते हैं कि गाना हमने लगाया था और सैयारा वाला, और कहा था कि आपको कोई याद आए तो बताइएगा, तो आपने कॉल की। आप हमें बचपन से लेके अभी तक अच्छे से जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जानने के बावजूद भी इतने प्यार से बात करते हैं तो फिर कोई बात तो होगी। वैसे जो जान लेते हैं मुझे, वो पता नहीं क्यों जान फिर लेते हैं। चले, आप ना ऐसा कीजिएगा। अमर भाई बहुत शुक्रिया। और आपने कहा आपको हमारी बातें सुन के कोई दिमाग में गुबार उठता है, और वो गुबार जब उठता है तो फिर आपका दिल करता है हमसे बात करने को, हमको कॉल करके ये बताने को कि हमारी बातों में आपको ढके छुपे फसाने अपने याद आते हैं, आप बीतियां याद आती हैं, और आपके दिमाग में कोई गुबार उठता है और वो आप बताते हैं हमें। लेकिन आपने अपने एक बंगाली दोस्त की बात शेयर की जो हमारी बातें सुन के उन्होंने जो मसाल दी, अब आप भी हंस रहे होंगे कि मैं इस बात को कैसे सब तक करूं, और मेरा दिल भी कर रहा है क्योंकि मेरे पेट में मरोड़ उठते रहेंगे। आपने कहा कि कैसे कहूं, आपके बंगाली दोस्त ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। उस बंगाली दोस्त ने बात करके तो गाली मुका दी ना हम सब मर्दों की, वो जो आए हाय। एक कहानी होती है जनाब, एक कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, फिल्में बनती हैं आप समझ गए होंगे। और वो जो आपने धड़कन मूवी अगर देखी है तो उसमें वो पता है ना, सनी देओल को वो करिश्मा कपूर अक्षय कुमार के साथ शादी करके चली जाती है। हाँ, तो कुछ ऐसी बात की आपने। आपने कहा हम तमाम, तकरीबन तमाम मर्दों की जिंदगी में ऐसा एक स्यापा होता है। ठीक मैंने कहा ना, अब लफ्जों को गोलमोल तो करना है ना। एक स्यापा आप कहते हैं कि होता है, और उस स्यापे को जब भी हम कोई गाना सुनते हैं, रोमांटिक कोई उदास गाना या कोई रोमांटिक गाना सुनते हैं, तो फिर वो स्यापा हमें याद आता है। बहुत मुश्किल था जनाब आमिर भाई, आपने चले बात भी होगी, अब मेरे पेट में मरोड़ भी नहीं उठेंगे पूरा हफ्ता कि मैंने बात कर तो दी ना। अच्छा, आपको भी अगर अपना अपना कोई बचपन का, जवानी का, स्कूल का, कॉलेज लाइफ का कोई स्यापा याद आता है, तो यही कहूंगा जनाब, आप कल्ले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, इस कश्ती में सवार हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, गम नहीं करना आपने। जनाब गड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, वो छोड़ू की आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की गड़ी आन पहुंची। जनाब आप कोशिश होगी बैक टू बैक आप कुछ गाने सुनेंगे, हमारी बातें आप सुनते रहते हैं, फिर मेरा दिल करता है कि आपको जाने से पहले बैक टू बैक कुछ गाने भी सुनाए जाएं, बिना कोई डिस्टर्बेंस आप 3-4 गाने आगे पीछे सुनेंगे। और लेकिन यही कहूंगा, कोशिश किया करें रब की मखलूक को खुश रखें, उनके लिए आसानियां पैदा करने का बायस बने, सबब बने। कहते हैं यही बंदे की बंदे से आजमाइश होती है, किसी को वो देके, बहुत ज्यादा देके आजमा रहा होता है, और किसी से लेके उसको आजमा रहा होता है। हमेशा कहता हूं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पहले अपने घर से शुरू करें, अपने घर वालों के लिए आप आसानियों का बायस बने, राहत का बायस बने, सुकून का बायस बने, खुशियों का बायस बने, मुस्कुराहटों का बायस बने। और दुनिया में जहां भी अपने घर से बाहर उसके बाद कदम निकालें, हमसायों से लेके, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों से लेके, कोलीग से लेके, अपने वर्कर्स जो आपके लिए काम करते हैं उनसे लेके, और इसके अलावा आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी सामने से आती है, किसी को रास्ता देते हैं, किसी पैदल राहगीर चलने वाले के लिए अपनी गाड़ी रोकते हैं, वो भी इंसान है, किसी गाड़ी वाले को वो ट्रैफिक में फंसा हुआ आप रास्ता देते हैं, वो शुक्रिया करे या ना करे, आप रब के लिए उस बंदे की जिंदगी में आसानी पैदा कर रहे हैं। याद रखिएगा, मामला आपका और रब का है, बंदे से एक्सपेक्ट ना किया करें, रिवॉर्ड लेने के लिए काम ना किया करें, ड्यूटी समझ के काम किया करें कि आप रब के बंदे हैं और उसके बनाए हुए बंदों के लिए आपने, ये आपका मिशन है कि आपने आसानी पैदा करनी है। हर इंसान का अपना अपना लाइफ का एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे, उस राह पे, उस अंदाज में जितनी रब ने आपको तौफीक दी है, जितनी आप आसानी पैदा कर सकते हैं आप आसानी पैदा करिएगा। ये मेरी अपनी आप बीती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूं, पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा, किसी सियाने से पूछिएगा, दीन का, मजहब का, अपने मजहब का, जो भी आप मजहब फॉलो करते हैं उसकी स्टडी कीजिएगा, तो आपकी मेरी बात की आपको तायीद करने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगियों में मौजज़े होंगे आपके। याद रखिएगा मेरे लफ्ज को, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ इबादात से मौजज़े नहीं होते, तस्बीहात से मौजज़े भी होते हैं, दुआओं से भी जिंदगियां बदलती हैं, मगर अगर आप रब के किसी भी बंदे से, आपके रिश्ते में है कोई या नहीं रिश्ते में, कोई अजनबी है, कोई राहगीर है, कोई रास्ते में गैर है, आप उनके लिए आसानी पैदा करके देखें जिंदगी में, रब आपके लिए मौजज़े आपकी जिंदगी में आपको दिखाएगा। ये मेरा चैलेंज है। अपनी यादों में, बातों में, चाहतों में, और सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझ ना चीज। जी हाँ, मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। मेरी अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत। हमेशा की तरह आपसे फिर दोबारा होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा। आपका और मेरा, मेरा और आपका। हाय, दिल को हाथ पड़ता है ये कहते हुए, पर क्या करें, कहना पड़ेगा। मैं भी हौसला रखूंगा, आप भी हौसला हिम्मत रखिएगा। जुदाई है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ठीक है। जाऊं मैं,

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01 274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायका तुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

100 तोले जाते

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: live on the decks, bringing you the hottest sounds. Let's go
1: on Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam and namaste. Salam and namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुए थी।
5: हम शरीफ क्या हुए,
6: मैं वापस
5: पूरी दुनिया ही बदमाश।
6: देखो मैं हूँ कहाँ, आ रहा हूँ पलट के।

0: right, that was the hit of the hour. बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप साहब का भी. और that was the hit of the hour, आपने enjoy किया. यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunday clock, it's a 8:15 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with the power of his gun. यहाँ पे छोटी सी नन्ही मुन्ही ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतर, हमारे भाई, हमारे दोस्त, सबका मैं नाम लूँगा थोड़ी देर के बाद. ड्राइविंग वेरी वेरी केयरफुल, इफ़ यू आर ड्राइविंग, ड्राइव वेरी वेरी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है ना. काफ़ी दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ड्राइव कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ड्राइव करें, एहतियात करें, और बहुत ही ज़रूरी है. और यहाँ पर छोटी सी नन्ही मुन्ही सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आई विल मेंशन यू ऑल योर नेम, जो भी मेरे साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, और सबका मैं फर्दन फर्दन नाम लूँगा. बहुत बहुत शुक्रिया, और गाना भी पेश करूँगा आप सबके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.
2: नई मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है.
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ. उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे.
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने. नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.
4: नफसेन जायका तुल मौत.
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक. गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं. टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. Bobby Shukriya, sab doston jinne mujhe flush kar chuke hain. Bobby Shukriya, aapka bhi. We had a lovely, lovely, lovely caller. Pehli caller se yahan pe aaj hamare Meetha bhai hain. Aur Meetha ji, Meetha ji, bahut bahut shukriya aapka. Rukhsar bhai hain. Aur Chaudhary Rukhsar bhai, bahut bahut shukriya aapka. Aap aaye aur bahar aa gaye. Bahut bahut shukriya aapka bhi. Thank you very much. Then we had a lovely caller from Wajid bhai. Bahut bahut shukriya aapka bhi. Chaudhary Manish Chakki wale, bahut bahut shukriya aapka bhi. Aap hamara saath de rahe hain. और हमारे मोहतरम, हमारे भाई शुएब भाई, राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारा साथ देने सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और सितारा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. शुक्रान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. गीता जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच. और आज सबसे पहले ये गीत मैं पेश करूँगा हमारे रुखसार भाई, आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, और यही गीत मैं पेश करूँगा आप दोस्तों के लिए होगा. और रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत आपके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल एज वेल. और हमें खुशी हुई है कि आप हमारा साथ दें. चौधरी फयाज साहब हैं, आप हमें याद करें, और आपकी पूरी टीम के लिए मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. और हमारे गिदन भाई हैं, हमारे पापी जान हैं, सुमित्रा जी हैं, आपके लिए भी होगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और सुमित्रा जी, यू एंजॉय योर बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से. आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे. और ये गीत आपके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका.

राइट, दैट वाज अमेजिंग ट्यून, और हमने आपको भी विश किया है और हैप्पी बर्थडे अखमिद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपकी पूरी फैमिली आपको विश कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमें अच्छा लगा जी। दिशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और अच्छा लग रहा है कि आप भी हमारा साथ दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आने वाला गीत मैं पेश करूँगा मनीष चक्की वाले, आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और वाजिद भाई आपके लिए, और हमेशा ही दुआ गो हैं और हमेशा ही दुआएँ करेंगे, और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए और हमारे जो मोहतरम हैं वाजिद भाई हैं उनके लिए खुशी दुआ करनी है, और दुआ के लिए हमेशा ही कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं, और आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वाजिद भाई के लिए दुआ करें। मोहम्मद नीव साहब है हमारा साथ दे रहे हैं, और बेहम लीज से हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपके लिए ये गीत होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और कुरुम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और सईद एहसान है ऑल द वे फ्रॉम लंदन से हमारा साथ दे रहे हैं, ये गीत में आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन का इंजॉय करेंगे। ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर। और शुएब भाई ये गीत आपके लिए भी अगर ठीक है ना, आप भी इंजॉय करें और दिल लगा के काम करें, हमेशा मैं कह दूँगा मेरे भाई, और काम कुछ छोटा बड़ा नहीं काम होता है, काम काम ही होता है, और दिल लगा के काम करें। और यहाँ भी ये क्या हो रहा है, हमारे कम्यूनिटी जी ने बंद हो गए, ये क्या हो रहा है, और अल्लाह खैर ही करे, और पहले ही बंद हो चुके हैं, ये क्या हो गया है। और जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं प्लीज़ मुझे दोबारा फ़ोन कर सकें करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि यहाँ पर कम्यूनिटी जो है ना रिफ़्रेश हो रहा है अपने अपने आप ही, और क्या कहने क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ ये मस्ती ना करें, आज नहीं करनी है, ठीक है ना। और ये गीत आप सब दोस्तों के लिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सूफी ज्वेलर्स 1192।

0: 121 Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014, Sophie Jewelers.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 That's Bradford 723030
3: राइट वेलकम बैक लिसनिंग बहुत बहुत शुक्रिया हम साहब दोस्तों का जो मेरा साथ दे रहे हैं और जहीर साहब हम बीस्टन से हैं लीज से हैं हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और थैंक यू वेरी मच अपीलो और बड़े ध्यान से बाद याद किया ने बड़ी बड़ी शुक्रिया मेहरबानी और नवाजिश और आप आए और बाहर आ गए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे और आपने दावत दी है इंशाल्लाह आप कभी आएंगे मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बड़ा ही अच्छा लग रहा है बड़ा ही खूबसूरत क्या कहने जी और हमारी तरफ से आपको मुबारखा मुबारखा ढेर की मुबारक बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनीवे मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक और जहीर भाई ये गीत आपके लिए भी होगा बिस्तर से आपके लिए भी होगा अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग और माशाल्लाह क्या कहने जी आपने मुझे गाना सुनाया होए होए होए होए होए होए कहते हैं चफ आ गई जी बड़ा ही खूबसूरत गाना आपने गुनगुनाया बड़ा ही प्यारा गीत था बड़ा ही अच्छा गीत था बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और गिदन भाई हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया गिदन भाई आपके लिए भीगा और हमारे पापी जन सुमित्रा जी के लिए होगा मुझे उम्मीद है यकीन के वो इन्जॉय करेंगे आज उनका जन्मदिन है हैप्पी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से और ये वो गीत में पेश करेंगे आप सबके लिए होगा अन बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी इकरार भाई ये गीत आपके लिए होगा एंजॉय द ट्रैक और सुनिए जी ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप हमारा साथ दे रहे हैं ये गीत आपके लिए होगा एंजॉय द ट्रैक

राइट वर्ल्ड दैट वाज अमेजिंग ए ट्यून एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और आपने विश कर रहे हैं हमारी भाभी जान कोश्मिता जी को उनका जन्मदिन है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और फर्दन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत माशाल्लाह पैगाम दिया है और आपने विश किया है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी चौधरी फरियाद साहब ने भी दिया है माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई हैं उन्होंने भी और हमारे मोहतरम मनीर साहब चक्की वाले हैं उन्होंने भी माशाल्लाह वाजिद भाई हैं हमारे शवेद भाई हैं माशाल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और ये गीत में पेश करने जाना सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप हमारा साथ दे रहे हैं बर्मिंघम में और आपकी जो ना यहाँ पे गैर हाजिरी लगी हुई है आप प्रोग्राम सुन रही हैं माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया और जो पिछले प्रोग्राम में आपकी गैर हाजिरी लग चुकी है और इसका सजा होगी और क्या होगी देखते हैं क्या होगा नहीं ठीक है प्यारी बहना ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत का आप इंजॉय करेंगे सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जिलेखा जी हैं शाहपरी जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया नशीन साहबा हैं बहुत शुक्रिया आपका भी वाजिद भाई और आपके लिए दुआ को हो चौधरी रुखसार भाई ये गीत आपके लिए भी होगा अब्दुल कय्यूम साहब फ्राइजिंग और से हैं ये गीत आपके लिए जहीर भाई हैं ये गीत आपके लिए जहीर फ्रॉम बीस्टन ली से हैं ये गीत आपके लिए भी होगा और दोबारा मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करने जा रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और ये जो खूबसूरत गीत है आप दोस्तों के लिए होगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपके गिदन भाई और हमारे भाई भी स्मिता जी ये गीत आपके लिए भी होगा इंजॉय द ट्रैक

0: Right, that was amazing, amazing tune, mind blowing tune. और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. And that was definitely going out to you and your family, your friend, your colleagues. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. We had a lovely call from मदरसा कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. कियानी साहब छागे जी छागे आगे और छागे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और आपके दोस्तों के नाम होंगे चौधरी फैसल साहब हैं, राजा आसफ साहब हैं, और बशारत हुसैन हैं, नबील सफदर कियानी साहब हैं, चौधरी यसीन साहब हैं, जंगीर साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, जो हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में सुन रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जो हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आने वाला गीत थोड़ी देर के बाद आपके लिए मैं पेश करूँगा. मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे डेफिनेटली, और स्पेशली मदरसा कियानी साहब आपके लिए होगा, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद. और आपने दिल लगा के काम करना मेरे भाई, और हमेशा मैं कह दूँगा हरकत नाल बरकत होनी है, और वही बात हो रही है. और काम काम ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो काम काम ही होता है. और हम भी ऐसे ही कहते हैं और हमेशा ही कहता रहूँगा, और बरकत होती है और क्यों नहीं. और डॉक्टर मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ हैं, इतनी आपने दवाएँ दी हैं हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. आपकी पूरी फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया. और एहसानमंद हूँ कि आप हमेशा ही हमें याद करते हैं और उज़्र अफज़ाई करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया दुआएँ करते हैं मेरे लिए, और हमें क्या चाहिए. और बहुत बहुत शुक्रिया आप जैसे हमारे सर पर हों तो और हमें क्या चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाथ सर पे हो, और यही दुआ हमारे लिए काफ़ी है. और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लग रहा है. और जो आप जब से आपके साथ गुफ्तगू हुई बड़ा अच्छा लग रहा है, और बड़ा ही बड़ी प्यार मोहब्बत चाहत करते हैं आप हमारे साथ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बड़े खलूस मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करते हैं, और बड़ा ही अच्छा लगता है कि मंचस्टर वाले, और उनको भी पता है कि ये हम आपके दोस्त हैं माशाल्लाह. और बड़ा ही अच्छी अच्छा होता है जब आप से मुलाकात होती है मैनचेस्टर में या ओल्डम में या रशडेल में या उस एरिया में, बड़ा अच्छा लगता है. और उनको सबको पता है कि ये जना भाई डॉक्टर मालिक साहब का दोस्त है. और बहुत बहुत शुक्रिया आपके, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप कौन हो, ठीक है. और ये आपका प्यार है, मोहब्बत है माशाल्लाह, और बड़ा ही अच्छा लगता है. और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और वही बात हो रही है, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं क्या है ला कोई वो बात करूं या आप, और वैसे ही शौकी मारूं, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है. एनीवे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहां पे हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 46 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक की, ब्रेक फौरन बाद मैंने गाना पेश करना सब दोस्तों के होगा जिनके नाम ले चुका हूँ, और सबके लिए होगा और आपके लिए भी होगा, और जो खामोश लिसनर है और चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर है, जो साइलेंट लिसनर है उनके लिए भी होगा जो हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. जैसे हमारे डॉक्टर मलिक साहब कहते हैं कि ये सब प्रोग्राम सुनते हैं, ये आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मेरे भाई. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एनीवे, कीप इट लॉक्ड.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रैडफोर्ड 7230 30।

अमेजिंग ट्यून, दैट वाज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट गीत, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारा साथ दे रहे तारिक जुल्फी साहब, माशाल्लाह क्या कहने जी। तारिक जुल्फी साहब आपके लिए गीत आने वाला है और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे। महबूब लाइफ साहब हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और उनके लिए भी गीत होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए और बाहर आ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके दोस्तों के नाम हैं, और यहाँ पे अब आपके दोस्तों के नाम हैं, सैयद मुलाजम हुसैन शाह हैं, आरिफ आसी हैं, बिलाल सुक्की हैं, मलक अजीज टैक्सी ड्राइवर हैं, सुल्तान महमूद क्रेची वाले हैं, परवेज बी डी फाई हैं ऐसे हैं, महबूब बी डी फाई से हैं, और आसफ़ रियाज साहब हैं, तारिक भट्ट जी हैं, मोहम्मद जंगीर साहब हैं, बाबा जानी हैं, मोहम्मद इब्राहिम हैं, शौकत महमूद हैं, और ख्वाजा मोहम्मद शफीक हैं, और शरफुद्दीन हैं, और यासर पट्टी साहब हैं, यासर महमूद साहब हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं, भाई सफा भाई सफ़ीउल्ला हैं, और यहाँ पे चौधरी शबीर साहब कीतरी से हैं, जवेद मीर साहब हैं, और आपके दोस्तों के नाम हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने सब दोस्तों को हमेशा ही सलाम पेश करते हैं, बड़ी अदब अदाब से, बड़ी खूबसूरत ये इनकी जोड़ी है माशाल्लाह, इनके दोस्त हैं माशाल्लाह, ये बड़े अरसे से साथ हैं, बिलीव करें, और ये एक वाहिद इंसान है माशाल्लाह हमारे भाई हैं, और हमारे तारिक जुल्फी साहब जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था सनराइज रेडियो पर जो लिस्टों का, और ये पहले और खूबसूरत इंसान थे माशाल्लाह, और अभी भी माशाल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी ही खूबसूरत इनकी गुफ्तगू होती है, और इनकी जो शायरी करते हैं बड़ी कमाल की शायरी करते हैं, बिलीव करें, और बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं, और इनके पास जो ख़जाना है और वो हमें पता है, और माशाल्लाह बड़ा ही ख़जाना है, बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। कभी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करनी है तो आपके दोस्तों का मैं नाम ले चुका हूँ, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपने जो पैगाम हमें दिया है बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमने नशर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ख़त भेजा है बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा ख़त, और बड़ा ही कहते हैं ना ख़त में खुशबू आ रही है, महक आ रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के ज़माने में कौन किसी को तोहफ़ा और कौन किसी को कोई लिखता है, और ये लिखते हैं हमारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका भी तोहफ़ा मिल गया है और बड़ा ही अच्छा लगा। और ये गीत मैं आपको पेश करूँगा, महबूब लाइफ साहब हैं और हमारे मोहतरम हमारे भाई भाई बहुत शुक्रिया, हमारे रुखसार भाई हैं आपके लिए भी गीत होगा, और हमारे मोहतरम चौधरी फरियाज साहब हैं आपके लिए भी होगा, और हमारी बहुत ही प्यारी बहना हैं और जो मेरे लिए दुआएं करती हैं, सोनिया बहना हैं ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम, हम उनके लिए दुआगो हैं, उनके बच्चों के लिए दुआगो हैं माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा लगता है। और देखो ये हमें ये हमेशा में जब मैं कहता हूँ कि फैमिली, ये मेरी फैमिली है, देखो जो मुझे फ़ोन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, दुआएँ करते हैं हमारे लिए, दिस इज वे कॉल ऑफ फैमिली, और ये हमेशा मैं कहता हूँ, और आज से नहीं मैं बड़े अरसे कहता हूँ फैमिली, और यही मेरी फैमिली है, बहन भाई साथी दोस्त अहबाब अजीज़ है, हमारे जो चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर हैं वो भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मुझे पता है कि आप प्रोग्राम सुन, जैसे हमारे डॉक्टर मलिक साहब कहते हैं कि ये प्रोग्राम सब सुनते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मलिक साहब, वी ऑल लव यू, यू नो वा, थैंक यू वेरी मच, जो आपने काम किया है ना, और वही बात हो रही है कि सबसे पहले जो काम आपने किया है आपको सल्यूट सल्यूट सल्यूट, और मैं शायद सल्यूट करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और ये वो गीत है जो विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़, और 9 o'clock के बाद यहाँ पे धमाका होगा आप सब दोस्तों के लिए, कीप इट लॉक्ड विद सुनर रेडियो 103.2 FM। सिमी जी ये गीत आपके लिए भी होगा, इन्जॉय द ट्रैक।

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब का भी जो हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ भी हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि यू नो यहाँ पे सब कुछ जो ना साथ साथ चलना चाहिए और साथ साथ होना चाहिए। और यहाँ पे
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time.
0: Right, the time in the studio is 8 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan.

0: जी
1: जी आदाब
0: जी आदाब।
1: तो एक गजल लाया हूँ आपकी महफिल के लिए, ये सईद शहीदीन का नाम है।
0: जी जी प्रसाद।
1: कहते हैं आज आए हैं कल जाना है।
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने।
1: आज आए हैं कल जाना है, फिर इश्क को रुसवा कौन करे।
0: हाय हाय हाय हाय।
1: आज आए हैं कल जाना है, फिर इश्क को रुसवा कौन करे। दो रोजा दुनिया है ये, तो दुनिया की तमन्ना कौन करे।
0: आए हाय क्या कहने, बहुत खूब
1: शुक्रिया।
0: वाह।
1: मजबूर नहीं मुख्तार सही,
0: आहा।
1: खुददारी को रुसवा कौन करे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: जब मौत ही मांगे से न मिले, जीने की तमन्ना कौन करे।
0: बहुत खूब बहुत खूब
1: शुक्रिया। उस लज्जत गम का क्या कहना,
0: आहा।
1: वो उस लज्जत गम का क्या कहना, वो याद तो आते रहते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: गम देने वाले के सदके, अब गम का मुदावा कौन करे।
0: वाह वाह बहुत खूब।
1: बर आए न जब कोई तमन्ना, फिर ऐसी तमन्ना से हासिल।
0: वाह वाह वाह।
1: बर आए न जब कोई तमन्ना, फिर ऐसी तमन्ना से क्या हासिल।
0: वाह।
1: गो दिल का तकाजा लाख सही, तो ही ने तमन्ना कौन करे।
0: हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
1: होंठों पे हंसी, आंखों में नमी, माथे पे शिकन बल अबरू में। होंठों पे हंसी, आंखों में नमी, माथे पे शिकन बल आबरू में।
0: वाह।
1: अल्लाह रे तर्जे पुस शे गम, अब गम का शिकवा कौन करे।
0: कौन करे। आए हाय बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह।
1: मखमूर फजा मस्ताना गठा, सागर की खनक गुंचों की चमक।
0: वाह वाह।
1: अब ऐसे मौसम में साकी अंदेशा फरता कौन करे।
0: आए हाय वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: आखिरी शेर कहते हैं
0: जी जी।
1: क्यों ना अपने नशेमन को खुद ही अब आग लगा दें हम।
0: वाह वाह वाह।
1: क्यों ना अपने नशेमन को खुद ही अब आग लगा दे हम। बिजली की शिकायत कौन करे।
0: हाय हाय वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: आंधी का शिकवा कौन करे।
0: वाह
1: शुक्रिया।
0: कमाल कर दिए कमाल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आपका शुक्रिया अदा करें हमारे महबूब लाल साहब हैं, वो भी अपनी जो ना वो थम ऊपर कर रहे हैं कि ब्यूटीफुल क्या कहने। वाह जी वाह वाह। एक और अशार हो जाए, एक और हो जाए वो आए और आपके लिए वो क्या कहने। जी
1: ये है मुस्तर अजमीन का नाम है, मुस्तर अजमीन।
0: अच्छा जी जी जी। अरशाद।
1: जिसको हो खुद तलाश किसी साहेबान की, जिसको हो खुद तलाश किसी साहेबान की, दीवार क्या बनेगा वो गिरते मकान की।
0: वाह वाह बहुत खूब। वाह वाह वाह वाह।
1: मिट्टी पड़ी हुई है तो सुबह की आंख में, मिट्टी पड़ी हुई है तो सुबह की आंख में, वो कदर क्या करेगा हमारी उड़ान की।
0: उड़ान की। आई हाय हाय हाय। वाह वाह बहुत खूब।
1: देखेंगे किसके दिल में गुलिस्तान का दर्द है, देखेंगे किसके दिल में गुलिस्तान का दर्द है, हम चाहते हैं आए घड़ी इम्तिहान की।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: उसकी निगाह दौलते दुनिया पे रुक गई, उसकी निगाह दौलते दुनिया पे रुक गई, इसको फकत है फिक्र इसी एक जहान की।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: वो लोग भी यहीं पे जमीन बोस हो गए। रेस भाई
0: जी जी।
1: वो लोग भी यहीं पे जमीन बोस हो गए, जिनकी हवेलियां थी बड़े आन बान की।
0: बड़ी आन बान की। आए हाय हाय क्या कहने। वाह वाह वाह।
1: जिनकी अनायतों से गुलिस्तान उजड़ गया,
0: आए हाय हाय,
1: उन पर निगाह नहीं मेरे पासबान की।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मुस्तर उन्हीं को मिलती हैं मंजिल की नेमतें, मुस्तर उन्हीं को मिलती हैं मंजिल की नेमतें, करते नहीं जो बात सफर के थकान की।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
1: आखिरी शेर आपके नाम
0: जी जी अरशाद।
1: मोहब्बत तो दोस्ती को पंपने नहीं देता, देती हिरसो हवस।
0: हाय हाय हाय।
1: मोहब्बत दोस्ती को पंपने नहीं देती हिरसो हवस।
0: वाह।
1: दोस्ती पे हमें फख्र है परवेज खान की।
0: हाय हाय हाय हाय। वाह वाह वाह वाह। कमाल कमाल कमाल।

बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवादिश, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए और बाहर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लगा कि आपने इतने खूबसूरत अशआर पेश किए हमारे लिए और सब सुनने वाले के लिए, और उन्होंने सब ने इन्जॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल आपने लूट ली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जजाक अल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वाओ, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक है, और हमारे गुरुजी भी आ गए हैं, और हमारे महमूद रफ़ी साहब भी आ गए, हमारे मुकेश भी आ गए हैं, लता जी भी आ गई हैं, ओए होए, और हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें। और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फ़ौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं, और सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच शबाजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप कोशिश कर रही हैं फ़ोन करने की, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या ट्रिक और ट्रेड क्या होता है यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कोशिश की है 2-3 दफ़ा, और बहुत बहुत शुक्रिया कोशिश करते रहें, और माशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो ना लाइन मिल जाएगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है वो आप दोबारा हमें फोन कर सकते हैं जब भी आपको दिल चाहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: राइट, वेलकम बैक एंड लिसनिंग, यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे मोहम्मद रफी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। और उनको जी हां कहेंगे, कुछ हमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। मोहम्मद रफी साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, कैसी तबीयत आपकी?
5: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ।
4: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत
5: बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आप जी कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का शुक्र है, आपकी दुआएं। और हमें क्या चाहिए मेरे भाई?
5: बस अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे, सलामत रखे, हम आपको सुनते रहें।
4: माशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन।
5: और आप हमें और हमारे बाकी बहन भाइयों को भी इसी तरह ही सुनते रहे हैं।
4: हाँ जी, क्या कहने, बहुत
5: हाँ जी। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, मुझे सुनने वालों पे लाखों सलाम। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, वही जिस पे हमको नाज है। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीन ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिस पे हमको नाज है, वही जिन पे सारे सनराइज रेडियो को नाज है। परवेज खान जी, परवेज खान जी, आप ही की तो वो आवाज है।
4: हाय हाय हाय हाय हाय
5: हाय हाय, मजा आया,
4: मजा आ गया, चस आ गई, चस, मजा आ गया,
5: बहुत ज्यादा मजा आया।
4: क्या कहने, क्या कहने।
5: और फरमाइश करते हैं आप परवेज जी, साहिल गुरु जी, बाबी से अब्बासी बहन, डॉक्टर हिम्मत कुमार, डॉक्टर पाशा, नर्स फरजाना एंड नर्स जूली
4: जी।
5: तो सबसे पहले ये एक रफी साहब की गजल है।
4: जी जी जी, अरशाद अरशाद।
5: मेरे पहलो में आके बैठो, खुदा के वास्ते। मेरे पहलो में आके बैठो, खुदा के वास्ते। मुझको अपने गले लगा लो, खुदा के वास्ते। लाखों अरमां तेरे हुजूर में लाया हूँ आज मैं, लाखों अरमां तेरे हुजूर में लाया हूँ आज मैं। 100 कदम चल के तेरी राहों में आया हूँ आज मैं। 2 कदम तुम भी चल के आओ, खुदा के वास्ते। 2 कदम तुम भी चल के आओ, खुदा के वास्ते। मुझको अपने गले लगा लो, खुदा के वास्ते।
4: वाह।
5: मेरा

शीश पत्थर से यूं न तोड़ो खुदा के वास्ते, मुझको अपने गले लगा लो खुदा के वास्ते, मेरे पहलू में आके बैठो खुदा के वास्ते, मुझको अपने गले लगा लो खुदा के वास्ते। तेरे कूचे में तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा, आज दिल खो बैठा। तेरा दीवाना हूँ इनकार नहीं, कैसे कह दूं के मुझे प्यार नहीं, कुछ शरारत तेरी आँखों की भी है, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं, तूने मांगा, तूने मांगा तो दिया नजराना, तेरा दीवाना हाय, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा, आज दिल खो बैठा, मुस्कुराने

0: की बाहों में आते आते लौट जाने की अदा भी कातिल कैसे कातिल से कैसे कातिल से हुआ मेरा याराना तेरा दीवाना हाय हाय तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा आज दिल खो बैठा खो बैठा खो बैठा आज दिल खो बैठा ओके सर जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: बड़ा एंजॉय किया मैंने खुद एंजॉय किया सबको सुनकर
1: थैंक यू वेरी मच बाबू
0: लव यू माय ब्रदर
1: लव यू टू बाबू शुक्रिया जाकल्ला खैर बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह हाफिज ये थे हमारे भाई हमारे दोस्त हमारे मित्र बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमें अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया इनका जो हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं भाई हैं हमारे दोस्त हैं और हमारे गुरुजी हैं वेलकम कहेंगे जी हैं कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे और क्यों ना कहेंगे यहाँ पर और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमें अच्छा लग रहा है और उस तो पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पर हमारा साथ कॉलर हैं और उनको मैं कहना है कि आप थोड़ा सा होल्ड करें कि वहाँ पर खामोशी होगी और आपने करना है वहां पे और उनको ये ना हो कि वो चले जाएं और यहां पे हमने गीत पेश करना है थोड़ी देर एक सेकंड के लिए

राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिदन भाई हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे पापी जान मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और आज वो खुशी मना रहे हैं क्योंकि उनकी बर्थडे है। और थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जो आपकी आप सुन रहे हैं रेडियो की आवाज़ सुन रहे हैं, और रेडियो में थोड़ी डिले है क्योंकि जब आप रेडियो की आवाज़ सुनेंगे और थोड़ी देर के बाद हमारी आवाज़ आपके पास आएगी, वहाँ पर डिले है। और आपने हमारा साथ देना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर मैं कोई कॉल नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पर मैंने अजान पेश करनी है थोड़ी देर के बाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, सब आरजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर, एंड थैंक यू वेरी मच कि आप आई हैं और बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर मैं अभी टाइम देख रहा हूँ क्योंकि अजान का टाइम जो होने वाला है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाबे अजीज़ हैं। और हमने कोशिश करता हूँ कि टाइम के साथ जो भी हो टाइम के साथ हो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमने ब्रेक लेंगे, अजान की ब्रेक, मगरिब की अजान होगी यहाँ पे ब्रैफर्ड यॉर्कशायर में। अपनी अपनी मकामी टाइम टेबल देख के सुन के आपने नमाज अदा करेंगे, और मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करनी है, एंड ऑल दोज ब्यूटीफुल जो लिसनर हैं हमारे, जो बीमार हैं खसूसन, उनके लिए दुआ करनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर अजान ब्रेक होगी, वो मुझे बहुत ही ज़रूरी है, हमने पेश करनी है, मगरिब की अजान होगी यॉर्कशायर ब्रैडफर्ड में। कीप इट लॉक्ड विद सनराइज़ रेडियो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारी पापी जान हैं, अस्मिता जी हैं, ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीन्स से हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबी जान, हाउ आर यू? आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, और हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और आपके बच्चों की तरफ से, और बड़े ही खूबसूरत गीत आपके लिए पेश किए बिटवीन आवर्स ऑफ 8 and 9, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ देने। जी
1: थैंक यू। जिसने मेरे तरफ से बोला था
0: जी,
1: देखा
0: जी जी, और दिशा जी ने हमें फ़ोन किया था, माशाल्लाह उन्होंने बड़े खूबसूरत मैसेज आपके लिए किए हैं, उन्होंने गाना जो है ना वो उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए गाना भी पेश करूंगा, और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, और आपने इंजॉय किया बर्थडे को?
1: बहुत था
0: जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी ये सुन के।
1: चलो पहले मैं सबको सलाम, जितने जिस सबको सलाम दे दूं पहले।
0: जी जी जी, गो हेड गो हेड।
1: शकील
0: भाई बड़ी वाला, हाँ उनकी वो किसी की लैंड अप हुई नहीं तो वो आ गए। जी जी माशाल्लाह जी जी जी जी,
1: शकील भाई बल्ली वाला, जावेद भैया है
0: जी,
1: मोहम्मद रफी भैया भी गाना बहुत अच्छा गाया
0: जी जी,
1: बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: सज्जाद पहलवान भाई है, चौधरी सैयद भैया
0: जी
1: सलाम
0: जी,
1: सज्जाद पहलवान भैया
0: जी,
1: जितने लोग आते हैं सबको मेरा सलाम नमस्ते
0: जी,
1: जितने जितने मेरे बर्थडे के लिए कहा है तो मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ
0: जी जी। बहुत हमारा
1: सती सहेली में आज अफसोस की एक मैसेज है
0: जी,
1: हमारे अपीका जी आज नहीं आया सती जी।
0: अच्छा,
1: एक बेन का हस्बैंड पाकिस्तान में फोर्स हो गया।
0: अच्छा, इन जी
1: इसके लिए हम सब लोग हम दुआ करेंगे इसके लिए
0: जी,
1: हम मिस करेंगे
0: जी।
1: तो अच्छा जी है, अतिका जी है, सलीम है, सिमी जी, रेखा जी, मुदा जी, सितारा जी
0: जी,
1: सब लोग आपको सलाम नमस्ते।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी,
1: अतिका जी के लिए सब लोग दुआ करना
0: जी जी।
1: दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, तुझे कसम है, उल्फत के रास्ते में, उल्फत के रास्ते में मिलेंगे हजार गम, मिलेंगे हजार गम, बन जाए जान पर भी गम से न हारना, गम से न हारना, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, इन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है, रोने से कम न होगी, रोने से कम न होगी, कभी मुश्किलें, कभी मुश्किलें, बिखरे हुए नसीब को कम से संवारना, हिम्मत न हारना, हे दिल तुझे कसम है, हे दिल तुझे कसम है, दुनिया सितम करे तो, दुनिया सितम करे तो न करना गिला कोई, न करना गिला कोई, जो तेल हो चुके हैं तो उनको पुकारना, तो उनको पुकारना, ऐ दिल तुझे कसम है, ऐ दिल तुझे कसम है, तो हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है।
0: वाह, भाभी जान, दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, वन ऑफ माय फेवरेट गाना था और बड़ा ही खूबसूरत नायाब गीत था, और ओल्ड इज गोल्ड और मैं शामिल कहता हूँ, और बहुत अच्छा लगा आपने इतना खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा और बड़ा ही खूबसूरत नायाब गीत है और बहुत अच्छा शुक्रिया
1: सबको, मेरा सलाम नमस्ते भैया,
0: जी जी जी जी,
1: मेरे बर्थडे के लिए जितने भी बोला था सबका शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाभी जान, आपके लिए बहुत अच्छा लगा और सबने विश भी किया और बहुत अच्छा लगा,
1: थैंक यू, आपने भी मेरे लिए गाना,
0: नहीं नहीं भाभी जान, ये आप हमारी फैमिली हो और माशाल्लाह खुशी और गमी में हम साथी हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया और बड़ा ही अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आएँ, और हम थोड़ी देर के बाद हम अपने जो मुकेश भाई हैं, हमारे गिदन भाई हैं, गुरु जी हैं, उनके से सुनेंगे, गाना सुनेंगे, क्योंकि अभी जो टाइम जो है ना बहुत ही कम है, इस आवर में 5 मिनट में कुछ भी नहीं होगा, तो उनको कहेंगे थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, और जब उन्होंने हेलो हाई करना है तो कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा इंतज़ार कर लें, तो जी थोड़ा हेलो हाई करना है तो सबको सलाम पेश कर दें, तो फिर हम आपको लिए नेक्स्ट आवर में लेके आएंगे जल्दी जल्दी, और आपने जो अपना जो भी गाना गुनगुनाना आराम से, और जो भी शेर शायरी करनी है कर सकते हैं, और जी
2: हाँ जी
0: गुरु जी, हाउ आर यू गुड, ठीक और सही, ठीक है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप आए हो बाहर आ गई, बहुत अच्छा लगा, और आप आज केक खा रहे हैं और क्या कहने जी, एंजॉय कर रहे हैं अपनी, क्या है कि बर्थडे पार्टी हो रही है आपके घर में, सुना है कि आज पार्टी हो रही है
2: वो तो पार्टी तो खत्म हो गई,
0: खत्म हो गई पार्टी, वाह जी वाह, अभी खुशबू आ रही है केक की, और थर्सडे थी, अच्छा अच्छा ओ अच्छा, आपके लिए उन्होंने आज फोन किया ना, वो आपकी बेटी ने दिशा ने,
1: आप
0: हाँ अभी मुझे बताया उन्होंने, तो मैंने कहा चलो मैं सुन कि आज आपकी बर्थडे, अच्छा थर्सडे थी आपकी बर्थडे, वाह दैट्स अमेजिंग अमेजिंग, देखो अभी भी वो आपके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपके लिए गाने सुना रहे हैं, और वाह फरमाइश कर रहे हैं, और दिशा की उन्हें पूरी फैमिली ने उन्हें को आपने विश किया, जी जी अच्छा अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अच्छा लगा, और वाह क्या कहना, ये आप देखो अपनी अपनी जो बच्चे आपकी फैमिली हैं, जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं माशाल्लाह, देखो वो आपके लिए उन्होंने आज उन्होंने हमें याद किया, उन्होंने फ़ोन किया, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई उन्होंने दिशा जी ने, और बड़ा ही अच्छा लगा, उन्होंने उन्होंने आपके लिए विश भी किया और गाने भी फरमाइश किए,
1: जी
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और हम गाना सुनेंगे थोड़ी देर के बाद में, नेक्स्ट आवर में आपके गुरु जी की आवाज़ में और मुकेश साहब की आवाज़ में सुनेंगे नेक्स्ट आवर में, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, तो बहुत बहुत हाँ, जो भी आपके फेवरेट गीत है ना आज मैंने भी पेश किए, बिलीव करें मैंने यहाँ पर जो भी फेवरेट गीत थे आपके लिए और वो आपके लिए मैंने पेश किए, और बड़ा ही अच्छा लगा, और वो जो एक और गीत था जो दिशा ने उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आपके लिए, वो भी मैंने पेश किया, माँ के बारे में गीत था, और बड़ा ही खूबसूरत गीत था, बड़ा नायाब गीत था, और हाँ वही गाना था, और वो भी मैंने पेश किया आपके लिए, और इतने खूबसूरत गाने पेश किए आपके लिए, बहुत अच्छा लगा, और उनकी चॉइस भी अच्छी है, और आपकी भी चॉइस अच्छी है, जो आप इतने खूबसूरत गाने गुनगुनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा इंतज़ार कर लें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आएँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच, और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, राइट दैट वॉज हमारे पापी जान और गुरु जी, और बाद जी वाह क्या कहने जी, उन्होंने उनकी जन्मदिन था और थर्सडे को, और क्या कहने जी क्या कहने, और आज भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पे मैं टाइम देख रहा हूँ, और क्योंकि टाइम थोड़ी देर के बाद आपको पता है कि न्यूज़ ब्रेक होगी, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं किसी को लेके जाऊँ अवा के दोष में, और वो उनको मैं कहूँ कि जल्दी करें ये करें वो करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बिलीव करें, देखो वो आप सब टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं, और देखो हमारे साथ दे रही हैं शबा आरजू जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बड़ा ही खूबसूरत इनकी जो शायरी है, ओए होए हो बेमिसाल कमाल की शायरी करती हैं, बड़ी खूबसूरत शायरी करती हैं, और आज से नहीं बड़े अरसों से कर रही हैं, और हमारी कुछ नसीबी है कि इन्होंने टाइम दिया हमें, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी इन्होंने विश किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया फ्लश करें, और महबूब लाइफ साहब आप भी कोशिश कर रहे हैं, शुक्रान भाई आप भी कोशिश कर रहे हैं, अब्दुल कयूम साहब आप भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राय अजर साहब आप भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारे ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे बहुत ही अच्छे एहसान भाई हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन से, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। कमूरी जी आपने मेरे साथ मस्ती नहीं करनी है, ठीक है। नदीम मिर्सूद साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप हमें जब भी आपको मौका मिले आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये कोई मेरा कसूर नहीं है, ठीक है ना, और ये ना कहें कि यार मेरा कसूर है, इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे कमेटी जी ना वो रिफ़्रेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि आज जो ना आज मूड में कि हमने रिफ़्रेश करना है, और आपको भी जब भी मौका मिले आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करना कि मैं आपको अपडेट देना है, क्योंकि यहाँ पर योर लिसनिंग रेडियो 100.6 FM 103.2 FM क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर डी ए बी प्लस ब्रैडफोर्ड कीथली इल्कली स्किप्टन लीज हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्ले डार्विन नेल्सन अकिंटन मिल्टन कीन में, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड सुन रेडियो ऐप ऑन एप्पल प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर ऑन www.sunriseradio.fm www.sunrise.radio दैट इज ऑल अबाउट। और यहाँ पे हमने करनी है न्यूज ब्रेक।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: From the Sky News Centre at 10, the Prime Minister has called the seizure of a sanctioned Russian Shadow Fleet tanker a blow to Vladimir Putin. In a dramatic nighttime operation, the Royal Marines boarded the vessel in the English Channel. Ukrainian President Zelensky says it will bring peace closer. Al Khans, who's recently quit as Armed Forces Minister, also praised the mission.
5: We've acted decisively, seized that ship, and that will save, just by the money reduced going back into Russia, will save thousands of lives in Ukraine. So I think it's a fantastic thing. I'm really glad it's happened. I'm glad we moved faster than we have been in the past. We've gone on with it and we've done it.
4: Donald Trump's criticised Israel after strikes on southern Beirut undermined peace talks with Iran. The US president says today's attack should not have happened. He's calling on all sides to stand down from fighting, insisting that Washington and Tehran are very close to forging a deal aimed at ending the war. Switzerland has rejected a population cap after becoming the first country in the world to hold a referendum on the matter. 45% supported a figure of 10 million, compared to 55% who didn't. At the World Cup, it's 0-0 at half-time between the Netherlands and Japan in Texas. Meanwhile, Germany thrashed Curaçao 7-1 earlier in their Group E opener. Tennis, and Emma Raducanu suffered defeat in her first grass court final to Croatia's Donna Vekic at the Queen's Club Championship. The British number one lost in straight sets in London.
6: I think Donna played a great match from the start to the finish, and I think she played great yesterday as well against KT, and it was tough to take for sure. But I had a good week here and it was just amazing to play at home.
4: And Lewis Hamilton's gained his first Formula One victory for 2 years after winning the Barcelona Catalunya Grand Prix earlier. The Ferrari driver finished ahead of George Russell, with Lando Norris coming in third to complete an all-British podium. Championship leader Kimi Antonelli was on course to finish second, but retired with just 4 laps to go. That's the latest from the Sky News Centre. I'm Bev Rimmer.
7: Music. Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
8: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: Right, that was a beautiful check order. यहाँ भी हमने क्या करना है कि time check करना है, which is very very important.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 6:10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with Parviz Khan. यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, गुरुजी हैं. Welcome कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदी कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
2: वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. फर्स्ट क्लास A1. व्हाट अबाउट योरसेल्फ, आर यू ठीक ठाक? कैसे ठीक है आपकी?
2: बस ठीक है. एक दुख समाचार है कि अतीका जी को बहन का हस्बैंड की फौत हो गई
0: जी. अल्लाह
2: बेचारी बहुत अफसोस है, उसको खुदा उसको हिम्मत दे.
0: आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन.
2: वो यंग था, वैसे वो तो बुरा भी नहीं था, वो यंग आदमी था ना.
0: जी जी जी,
2: इसीलिए अफसोस होता है.
0: हाँ, बहुत दुख, जो कोई भी हो और दुख होता है ना, जो दुनिया से चला जाए, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हैं, और उनके लिए भी दुआ गो हैं. जी
2: वही ना, इसीलिए तो बोलता हूँ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं
0: जी.
2: सभी इंसान जो हम लोग है, हम मिल के आराम से रहो
0: जी. ऐसी ऐसी
2: तो सबसे पहले हमारा शकील भाई ने आज कुछ जादू किया, वो पहले मेरे से पहले आ गया.
0: हाय हाय हाय, देखो ना नदीन महसूस साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, उनकी लाइन ड्रॉप हुई है और उनको मिल गई है, और ऐसे ही सिलसिला शुरू हो गया, और फिर यार साहब को भी लाइन मिल गई है, क्या कहने. वाह जी वाह.
2: तो शकील भाई है हमारा, जावेद मीर भाई है, मोहम्मद हनीफ भाई है, साजिद भाई है, वाजिद भाई है, हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद भाई, वो भी मेरे से पहले आ जाए.
0: हाय हाय हाय, क्या कहने. देखो ना, देखो
2: अभी अभी अभी ज्यादा उस्ताद होने लगा.
0: क्या कहने जी, क्या कहने. वाह वाह.
2: फिर सजद पहलवान
0: जी,
2: हमारा इकबाल भाई
0: जी,
2: पापा सती डॉक्टर मलिक साहब
0: जी,
2: हमारा मोहम्मद रफी साहब भी आ गए.
0: वाह.
2: फिर हमारा परवेश खान भाई है, हमारी बहन समरीना खान है, आसिया जी है, अतिका जी है, सलीना जी है. सलीना जी आती है, उसका आया था फोन?
0: नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया आज, नहीं फोन किया उन्होंने. उन्होंने सिस्टर में नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया आज. शालिनी ने भी फोन नहीं किया आज जी.
2: आपने बोला वो क्या, वो लता जी बोले लाइन पे है.
0: नहीं नहीं, वो मैं आपको कह रहा हूँ, भाभी जान को मैं कह रहा हूँ.
2: अच्छा अच्छा,
0: भाभी जान को कह रहा हूँ, लता जी आपको उनको कह रहा हूँ, और उन्होंने फोन नहीं किया. और सलीना जी को भी, वो भी उन्होंने वो जो टाइटल था ना, वो आपको दे दिया उन्होंने. वो टाइटल, वो टाइटल जो आपको मिल गया जी,
3: इतना बड़ा टाइटल मेरे लिए.
0: हाँ देखो ना, उन्होंने आपको पास कर दिया, उन्होंने कहा मैं फोन किया, उन्होंने कहा लास्ट वीक उन्होंने फोन किया था, उन्होंने कहा कि ये टाइटल मुझे उनको दे दें, कि मैं अभी मैं बीमार हूँ, तो वो ये टाइटल उनको दे दें. मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो ये उसकी खूबसूरती.
2: अच्छा, फिर हमारी सिमी जी है, रेखा जी है, हमीदा जी है, सितारा जी है, मिस्टर मिसेस पटेल है
0: जी,
2: जो जो सुन रहे सबको हमारा बहुत बहुत सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
2: तो ये मैं कोशिश करता हूँ, देखे क्या होता है यार
0: जी.
2: ए रात ए चांदनी फिर कहा,
0: तुम
2: जा दिल की दास्तां.
0: वाह वाह वाह.
2: ए रात ए चांदनी फिर कहा,
0: वाह वाह वाह,
2: जा दिल की दास्तां.
0: क्या कहने.
2: तेरो की सांसों पर सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में सच के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी ना आएगी. तो ये पल और है ये समा, जा दिल की दास्तां.
0: क्या कहने, क्या कहने.
2: रात ये चांदनी फिर कहा, जा दिल की दास्तां.
0: क्या कहने.
2: लहरों के हो तो पे धीमा धीमा राग है, दीगी आवाओं में ठंडी ठंडी

सुजुकी दास्तां, तेरा ते चांदनी फिर कहां, तुम जा दिल की दास्तां, जाती बहारे है उड़ती जवानियां, तारों की छाओं में पहले

0: की दास्तां वो सुन जा दिल की दास्तां।
1: वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, और बहुत खूबसूरत मूवी भी है। गोइंग बैक इन 1952 की जाल मूवी वाज द नेम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। वाह ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बाहर आ गए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, रब रखा, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ दैट वाज अमेजिंग, और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे धमाका होगा। और शबा आरजू जी आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
5: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
4: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
5: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुनर रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के, जो मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओए होए होए, देखो ये कौन आया हमारी महफ़िल में, ये कौन आया हमारी महफ़िल में, और देखो ये कौन आया है हमारी महफ़िल में, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका। भाई सब इनको जानते हैं और बच्चा बच्चा इनको जानता है, और क्या कहने जी, क्या कहने। और आज हमारी खुश नसीबी है, देखो ये कौन आया हमारी महफ़िल में, और क्या कहेंगे इनके बारे में, जितनी भी मैं इनकी तारीफ करूं कम है, और इनके चाहने वाले इतने हैं दुनिया में, और बहुत अच्छा लगा। वेलकम कहेंगे, जी हाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, और सब के एक खूबसूरत, और जितनी भी इनकी मैं बिलीव करें, और इतनी खूबसूरत शायराएँ, और पूरे यूके की एक नाम है इनका, और सबा आरजू हैं, और माशाल्लाह क्या कहेंगे, और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
6: वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मेरी बेना आजकल छा गई है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, शेफील हो या ब्रैडफोर्ड हो या मैनचेस्टर हो, क्या कहने।
6: जी जी,
1: वाह,
6: थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अरसे के बाद फिर हाजरी दे रही हूँ।
1: देखो ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं यार कहाँ चले गए हमारी प्यारी बेना, कहाँ चले गई हैं, तो देखो आप आ गई हैं, और आपके लिए ये जी,
6: थैंक यू। अच्छा भाई
1: जी,
6: स्टार्ट करती हूँ।
1: जी जी, अशाद,
6: मैं अब मैंने खामोश रहना सीख लिया है।
1: अच्छा, वाह वाह, क्या कहने,
6: क्योंकि सच बोलने वालों को दुनिया तोड़ देती है।
1: हाय हाय हाय, बेशक, क्या कहने, वाह।
6: सच्चे चेहरे पे मत जाओ,
1: वाह,
6: यहाँ आंसुओं का समुंदर छुपा होता है।
1: हाय हाय, मकरर जी, मकरर, बहुत खूब, बहुत खूब,
6: यहाँ आंसुओं का, सॉरी, हंसते चेहरों पे मत जाओ,
1: जी जी,
6: यहाँ आंसुओं का समुंदर छुपा होता है।
1: बहुत खूब,
6: जो रातों को सो नहीं पाते उनका दर्द कोई समझ नहीं पाता।
1: हाय हाय क्या कहने,
6: लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा पर अंदर का खालीपन कभी भर नहीं पाता।
1: हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
6: जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर सफे पर सिर्फ दर्द लिखा होता है।
1: हाय हाय हाय हाय वाह वाह।
6: और एक और है कि
1: जी जी अर्शाद,
6: अब दिल वो नहीं रहा जो हर बात पर टूट जाया करता था।
1: हाय हाय हाय हाय वाह।
6: अब तो दुख सहने का एक सलीका आ गया है।
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
6: पहले आंखें फौरन भीग जाती थी।
1: हाय हाय।
6: अब दिल रो लेता है और चेहरा खामोश रहता है।
1: हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब वाह।
6: कभी ख्वाबों को सीने से लगाया और आज वही ख्वाब दिल के बोझ बन गए।
1: होय होय होय होय होय वाह वाह वाह वाह।
6: कुछ रिश्ते ऐसे भी मिले जो साथ होकर भी तन्हा कर गए।
1: वाह क्या कहने वाह।
6: अब किसी को कुछ सुनाने का दिल नहीं करता।
1: वाह वाह।
6: जो सह लिया वही काफी है। अब बस ठीक हूँ कहना आ गया है।
1: वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
6: और एक और है
1: जी जी अर्शाद,
6: जिंदगी ने आज फिर सवाल किया है।
1: हाय हाय जिंदगी ने आज फिर सवाल किया है वाह वाह।
6: क्या खुद से मोहब्बत हलाल है क्या।
1: हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह कमाल कमाल।
6: जो ख्वाबों का घर बनाया था कभी इसी को अपने हाथों से जलाया जलाना हलाल है क्या।
1: हाय हाय हाय वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
6: हंसते चेहरे पर छुपे हैं जख्म गहरे और खामोशी में चीखना भी हलाल है क्या।
1: हाय हाय वाह वाह वाह वाह बहुत खूब।
6: और
1: जी
6: एक आखिरी है
1: जी जी जी।
6: कभी सोचा था कुछ लोग हमेशा साथ रहेंगे पर वक्त के साथ सब बदल जाता है।
1: वाह जी वाह क्या कहें बेशक।
6: कुछ रिश्तों में दूरियां नहीं आती बस बातें कम हो जाती हैं।
1: कम हो जाती हैं हाय हाय हाय।
6: कुछ लोग अलग नहीं होते बस पहचान अनजानी सी लगने लगती है।
1: बहुत खूब बहुत ही आला वाह वाह वाह वाह कमाल कर दिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और वो जो पुरानी यादें हैं और पुराने दिन हैं और वो जो माजी के दिन हैं वो दोबारा वो याद आ गए हैं आपकी खूबसूरत शायरी के सुनने के और बड़ा ही अच्छा लगा बड़ा ही खूबसूरत। और आप हमारे शाना रेड्डी की शान और बान है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी आप शिरकत करते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच
6: भाई। जब रेडियो स्टेशन ये खुला था
1: जी जी जी जी
6: तो मुझे अभी भी याद है कि अदरीस साहब का प्रोग्राम
1: हमारे भाई अदरीस साहब का प्रोग्राम होता था और वहाँ जी माशाल्लाह
6: और मैं उनके प्रोग्राम में पहली कॉलर थी।
1: हाय हाय हाय पहली कॉलर थी वाह वाह क्या कहने क्या कहने बहुत अच्छा लगा और बड़ा ही अच्छा लगा। और जो आपके सुनने वाले हैं हमारे सुनने वाले हैं वो आपको जानते हैं वो आपको सलाम पेश करते हैं हमेशा ही और बहुत अच्छा
6: मेरी तरफ से सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें ये ना हो कि गायब हो जाएं और जी आते रहें करेंगे और आपके लिए दरवाजा खोल के रखा हुआ है हमने वेनेसडे और संडे की शाम ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया रब रखें अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। वाओ That was amazing caller और शबा आरजू साहिबा थी और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे नौजवान आ गए हैं नौजवान क्या कि हमारे भाई आ गए हैं और हमारे भाई हमारे बहुत खूबसूरत भाई हैं और क्या कहने क्या कहने। यहाँ पे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त है शुक्रान भाई नौजवान हैं हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: हजूर कैसी तबीयत आपकी।
7: अल्हम्दुलिल्लाह
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे बड़ा ही मलाल हुआ बड़ा ही दुख हुआ पिछले प्रोग्राम में और आप चले गए उस वक्त। चलो कोई बात नहीं आज उसको हम कोटे को पूरा करते हैं ठीक है ना जी। गो अहेड जी जी मेरे भाई आवाज आ रही है। शुक्रान भाई आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम

0: महबूब वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: कैसी तबीयत है मेरे भाई? ठीक ठाक से ठीक है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं क्या हुआ मेरे भाई को, वो और ऑन एयर थे और पता नहीं क्या हुआ, उनकी आवाज़ कम बंद हो गई है, पता नहीं क्या हुआ।
1: अभी तो आ रही है ना सही?
0: आप, हाँ, आपकी आवाज़ खूबसूरत आ रही है, बड़ी खूबसूरत आपकी आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी,
1: तो अभी आ रहे हैं हम
0: जी। आप आ रहे हैं आवाज़ के दोष में, सब सुनने वाले और आपको सलाम पेश करते हैं, हम ही पेश करते हैं आपको। जी
1: जी, थैंक यू जी।
0: जी
1: सबको सलाम, और हमारी तरफ से चौधरी मुजफ्फर हैं, चौधरी फरियाद, चौधरी टकसार, तारक गुरफी हैं, महमूद सुल्तान कराची वाले हैं, जो एदबी साहब हैं
0: जी,
1: और इग्जा जी हैं, गजाला जी हैं, सीमा जी हैं, अभी सबक सुना, बड़ी देर बाद सुना,
0: बड़े दिनों के बाद आपने सुना उनकी आवाज़, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत शायरा है और बड़ी खूबसूरत हमारे योगशर की, ब्रैडफोर्ड की, माशाल्लाह। जी
1: जी जी
0: जी,
1: तो आज शायरी थोड़ी सी नजर करना चाहेंगे साहब, सामिन के नाम।
0: जी जी,
1: भाई शकील साहब उन्हीं के नाम और आपके नाम।
0: जी
1: शायर लिखता है,
0: जी जी,
1: तेरा यूं दिल को धड़काना मुझे अच्छा लगा जाना, यूं दिल को धड़काना मुझे अच्छा लगा जाना, अचानक लौट कर आना मुझे अच्छा लगा जाना।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
1: दिल को धड़काना मुझे अच्छा लगा जाना, अचानक लौट कर आना मुझे अच्छा लगा जाना।
0: वाह वाह,
1: तुझे यूं रूबरू पाकर मेरी मगमूम आंखों का,
0: वाह,
1: तुझे यूं रूबरू पाकर मेरी मगमूम आंखों का, तू धीरे से छलक जाना अच्छा लगा जाना।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने,
1: धीरे से छलक जाना मुझे अच्छा लगा जाना।
0: वाह,
1: खोया है ना पाओगे जमाना मुझसे कहता था,

0: मेरी सारी खताओं को नजरअंदाज कर देना।
1: वाह क्या कहने,
0: मेरी सारी खताओं को नजरअंदाज कर देना।
1: वाह
0: यूं माफ कर जाना मुझे अच्छा लगा जाना।
1: वाह
0: तेरा यूं माफ कर जाना मुझे अच्छा लगा जाना। तेरा यूं दिल को धड़काना मुझे अच्छा लगा जाना। अचानक लौट कर आना मुझे अच्छा लगा जाना। अचानक लौट कर आना मुझे अच्छा लगा जाना।
1: वाह हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब।
0: के लिए इतना ही था।
1: आय हाय हाय मजा आ गया जी, चश आ गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करें, हमारे चौधरी फरियाज साहब हमें फ्लैश कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका भी बड़ा अच्छा लगा
0: और
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: आप आए,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना ख्याल रखिए और दुआ मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। रब रखा। ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त और जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और बहुत अच्छा लगा और हमारे मोहतरम और भाई हमारे दोस्त और जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे अब्दुल कय्यूम साहब फ्राइजिंग और से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी भी मेरे समातु में, मेरे कानों में जो आपकी आवाज़ है, जो आपने गाना गुनगुनाया था, वो अभी भी आ रही है। वाह वाह
2: अच्छा,
1: बड़े खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत गीत। वाह
2: चलो, आपने प्रोग्राम के शुरू में एक गीत
1: जी जी प्ले
2: लगाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा
1: जी जी,
2: मेरे पसंदीदा गीतों में से है।
1: वाह वाह।
2: लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वही गीत आपको सुनाऊं
1: जी जी,
2: लेकिन मेरी आवाज आज मुझे कुछ लगता है कि बैठी बैठी सी है।
1: इतनी प्यारी आवाज है, इतनी खूबसूरत आवाज है।
2: ऐसा होता है, बहुत ऐसा होता है कि अपना ही लिखा नहीं पड़ा जाता।
1: हाँ ऐसा हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है।
2: तो जी। आगे जाने से पहले मेरे तमाम सुनने वालों को, जो इस वक्त घरों में, बाजारों में, दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों में, होटलों में, रेस्टोरानों में, खेतों में, खलियानों में, बल्कि जहाँ कहीं भी ये नशरियात सुनी जाती है, मैं सबको सलाम कहता हूँ।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: अच्छा पता नहीं ये किस फिल्म से है, मुझे नहीं पता
1: जी जी।
2: तो गीत कुछ इस तरह है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मोहब्बत के वादे बुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारे ये दिल भी तुम्हारा, जो ना हो यकीन तो कभी आजमा लो, मुझे प्यार की जिंदगी देने वालो, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बस इतना ही काफी है।
1: कमाल कर दिया, कमाल, ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत आपने आवाज पाई है, बड़ा अच्छा लगा। और गाना भी मेरा फेवरेट गाना है, और ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, 1961 की प्यार का सागर, और कमाल की मूवी है, बड़ा ही खूबसूरत। वाह भाई क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में लिखें। लाफिज लाफिज, बहुत शुक्रिया। वाह कमाल ही कर दिया अब्दुल कय्यूम साहब ने। और यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो हमारा साथ दें, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रान, आप इन दोबारा मुझे फोन करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन

0: जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। और बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं। और वाओ, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और रूबी जी हमारा साथ दे रही हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन से हैं, और शी इज़ वेरी वेरी वेरी पॉपुलर सिंगर, अमेजिंग सिंगर। इनकी जो आवाज़ है बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। रूबी जी, इट्स यू नो व्हाट, इट्स ऑनर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ
5: थैंक यू सो मच
4: रूबी जी, हाउ आर यू, आर यू गुड?
5: आई एम गुड, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nice to have your company. And you know what? It's always a pleasure to have you. MashaAllah, what a beautiful singer you are. Amazing singer you are. Aur main kitni tareef karun main aapki. Aur you know, aap ek gana sunaye, ek nahi do gana sunane, koi baat nahi. Go ahead, all yours.
5: It's my pleasure. Thank you so much for giving me this opportunity.
4: Always, always, always.
5: And chalo, main koi itni badi singer nahi hoon, but Shokya singer.
4: You know what? Aisi baat na kare. Hame pata hai ki London वालों को पता है कि कितनी बड़ी सिंगर हैं आप।
5: थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मैं पेश करना चाहती हूँ आपके लिए
4: जी जी,
5: फ्रॉम द फ्यूम दिल का रिश्ता, और गीत के बोल हैं दैया दैया रे।
4: हाय हाय हाय, क्या कहने।
5: दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे। आशिक मेरे, मैंने तुझसे प्यार किया रे।

0: वाओ
1: मैं नजरे मिला हूँ तो कैसे मिला हूँ मुझे शर्म आने लगी है ना देखूं तुझे तो मैं कैसे बचाऊं मेरी जान जाने लगी है आ

0: Thank you.
1: Amazing, amazing work. Wow, wow. You know what? It's better than from the movie, believe it or not. It's amazing, amazing. Chaka, you go amazing work. You know what? If you want to do another one, go ahead.
0: Yes. Okay, thank you. Okay, ये मैं गाना गाऊंगी फिल्म हस्ते जख्म से है
1: जी जी
0: और गीत के बोल हैं बेटा आप दिल की तमन्ना
1: हाय हाय हाय क्या कहने वाह
0: ओके थैंक यू बेटा दिल की
1: वाओ
0: तमन्ना यही है
1: वाओ
0: तुम ही चाहेंगे तुम्हें पूजेंगे
1: वाह
0: तुम्हें

0: थी
1: वाह क्या कहने
0: धड़कन अपने सीने की हमको जीना पड़ता था ख्वाहिश कब थी जीने की अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है चलो

0: Thank you.
1: Wow, wow, wow, wow. Wow, wow. It's amazing. You know what? You know what? I wish I had a bit more time to give it some more time to you. But unfortunately, Tusak, mashallah, amazing voice. And you know what? It's always nice to have your company. It's always a pleasure to have you in my program. You know what? You are a superstar. Believe it or not, you are a very, very good singer. Keep up the good work. Keep doing what you're doing and what you're best at. And, you know, sing away. And that's what you're good at. And keep it locked with the Sunday Radio. Bahut shukriya. Bahut shukriya.
0: Thank you so much for giving me the opportunity.
1: Always. My program is always for you, Wednesday and Sunday evening. Bahut shukriya. Apna khayal rakhein aur dua mein yaad rakhein. Bahut shukriya. Thank you very much.
0: Thank you so much.
1: Before you go, this is for you. Bahut shukriya. Thank you very much.
0: Thank you so much.
1: Allah Hafiz. That was Ruby G. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. And that was Ruby G all the way from London. Bahut shukriya. Inka bhi bahut shukriya. Hame acha laga. Aur yahan bhi hamara saath de rahe hain hamare mohtarme, hamare ustad mohtarme. Aur unko bhi welcome. Ji hanu khush aamdeed. Bismillah kahunga. Aur yahan bhi hamare ustad hain. M. Khan ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji hazur.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jahan mein aap.
1: जी
2: आप साफ हो जितने लिसनर खवातीन और हजरात है सबका शुक्र गुजार हूँ टाइम
1: जी
2: फेस करने की बजाय वो से लोग आपके इंतजार में पीछे
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जजाकअल्लाह खैर बहुत शुक्रिया
2: अल्लामा इकबाल का कुछ चंद शेर
1: जी अरशाद
2: तेरी निगाह में है मोजजात की दुनिया
1: क्या कहने
2: मेरी निगाह में है हादसात की दुनिया
1: हाय हाय हाय
2: तखलियात की दुनिया गरीब है लेकिन गरीब तर है हयातो ममात की दुनिया
1: बहुत खूब
2: अजब नहीं के बदल दे उसे निगाह तेरी बला रही है तुझको मुमकनात की दुनिया
1: वाह
2: आगे मियां साहब ने बड़ा खूबसूरत इसी जो मौजूदा आचार्य मियां साहब का एक अपना अंदाज है मियां साहब फरमाते हैं ओ जे नारी लोग न्यारे आदम नाल ना मिलते आस रबे दी सफर सदामा रख तमल दिल दे यारी तेरी नाल इंसाने जिनस जिनस नू चाहे नाले घर सजन दे बैठो मिल रसी हल राय
1: वाजिबा
2: जिसमें बारी मुश्किल सर थे वो भी चट गुजारा अज पल के उठ जासन परियां जा लासन घर बारा क्यों कर मेरा बचपन उठे के कर फेर मलेसी बाज दिलेरी साधन ओखा
1: वाह वाह
2: यो परियां दे देसा साज नू पकड़ दिलेरी करके खूब तसली
1: वाह जी वाह
2: किया वुजू शहजादे सोने जाए नमाज उठ मल्ली
1: वाह
2: आकी भांग नमाज गुजारी दो यारां रल मिलके दर्द लतीफे पूरे किते मसनत तस्री मसनत तस्बी मल के जो आदमी इल्म की दुनिया में
1: जी
2: इल्म मुक्त बांधता है
1: जी
2: उसका दुनिया में भी आखिरत में भी नाम रहता है
1: माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया और अच्छी गुफ्तगु हुई है माशाल्लाह बड़ी इल्मी गुफ्तगु करते हैं ये है हमारे एम खान जी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे भाई हमारे दोस्त जितनी तारीफ करो कम है बहुत शुक्रिया शुक्रान भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू आपकी लाइन ड्रॉप हो
3: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू साजी कैसे हैं आप
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप आए और बहार आ गई है जी आप शुरू कर लें और बहुत अच्छा लगता है जब भी आप शिरकत करते हैं प्रोग्राम में जी
3: जी आज मेरी जान आवणे
1: हाय हाय
3: मेरा मान आवणे ते आज मेरी जान आवणे ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਦੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਵਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਣੇ ਪੂਰੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸਾਂ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰੀ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਿਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਸਾਰੀ ਵੰਜੋ ਤੇ

आवणे एक मेहमान आवणे रंग बिरंगी बत्तियां लावो गलियां न सूट पवावो गलियां न सूट पवावो खुशियाम दीद दा टिक्का यारो गली मोड़ ते लावो गली मोड़ ते लावो।

0: ਆਵਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਣੇ
1: अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और बड़ा अच्छा लगा, और जो गाना गुनगुनाया आपने मेरा फेवरेट गीत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, डट वॉज हमारे शुक्रान भाई, अल्लाह पाक मिशा उनको खुश रखे। और ये ताहे नायर साहब का नया गीत है और बहुत अच्छा लगा, और उनके शहजादे हैं, उनके जो शहजादे हैं उन्होंने गाना गाया, साहिल नाहिर ने, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका। और बड़ा ही खूबसूरत ये उन्होंने गाना गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हमने क्या करना है, ओए ओए ओए ओए ओए सदके सदके सदके जावा, जहाँ पे हमारे सुपरस्टार आ गए हैं, हमारे भाई रुखसार भाई भी आ गए, और यहाँ पर छोटे से ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया सुपरस्टार भी हैं, और शुक्रगुजार हूँ सबका जी। ओए होए होए, मैं किस किस की यहाँ पर मैं तारीफ करूँ, और ये जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ये आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका कि आप आएँ और बाहर आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ पे हमने करना है, टाइम चेक करना है कि क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर लवली कॉमेंट इज़ वेल एंड लवली वर्ड इज़ वेल। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: But our time in the studio is 44 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. Yahan pe nikki ji break, choti si nanni mani si break, keep it locked.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
6: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
5: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
6: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, और हमारे शहजादे, हमारे मीठा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
8: चश्मे रोशन दिले माशा बा कमाल लाजवाब बहुत आला बा इज्जत बा वकार बा शोक हर दिल दी शख्सियत और बहुत नफीस और बहुत लतीफ मेरे प्यारे भाई चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। या अली मदद,
1: या अली मदद, पीर मौला अली मदद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी इतनी खूबसूरत। हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बाहर आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
8: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं शुरू से ही आपका प्रोग्राम माशाल्लाह मुझे सुनने की सादत हासिल हुई है, और माशाल्लाह शुरू से लेकर ये आखिरी जो माशाल्लाह मोहतरम आए थे उन तक, और मेरे बाद जो शख्सियत आएगी माशाल्लाह इतना खूबसूरत, वो कहते हैं ना कि कहाँ से ये गोयर लेके आते हैं, वो किस सदफ से ये हीरे निकालते हैं।
1: पर ये सब का कमाल है, मौला का करम है, मौला का कमाल है, सब मौला का, मेरा कुछ कमाल नहीं है। और अच्छा लगता है कि जब सब आते हैं माशाल्लाह, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं वो आना चाहते हैं तो कई दफ़ा लाइन नहीं मिलती है, तो इंशाल्लाह किसी रोज वो भी आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए वो कुछ ना कुछ पेश करेंगे जी
8: इंशाल्लाह। क्योंकि आपका प्रोग्राम इतना बिजी होता है, मेरा ख्याल ये 3 घंटे जो आते होते हैं ना, जैसे 3 मिनट होते हैं, यकीन करें कि वो लोग जानों में लगे होते हैं।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
8: ये सब आपका खलूस है, आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, और माशाल्लाह आप जिस अंदाज से और जिस खूबसूरती से तमाम माशाल्लाह जो पर्सनैलिटियाँ आती हैं माशाल्लाह और जो हमारे इतने प्यारे आते हैं सभी को आप इतना प्यार इतना मान इतना सम्मान देते हो तो फिर लोग दो आते हैं ना।
1: हाँ, ताड़ी जो ना दो हाथ से बजती है ना, ऐसे ही होता है मेरे भाई। क्या हाल है? और कमाल हो गया मेरे भाई, आप आए और यहाँ पे हमें पता नहीं अजान भी यहाँ पे शो हो रही है और ईशा की अजान भी शो हो रही है माशाल्लाह। नहीं नहीं, आप अपना मुकम्मल करें और फिर मैं अजान पेश करता हूँ, क्योंकि
8: कितना टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो कोई मसला
1: नहीं। नहीं नहीं, आप अशार पेश करें, आप पेश करें क्योंकि अभी टाइम है। जी जी, टाइम अभी है जी।
8: तो फिर उसका मतलब सलाम दुआ ना करूँ की लिस्ट जो चौधरी फरियाद साहब किया उस पे कर दूं के हाल
1: है,
8: क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि लोग जो है ना, क्योंकि उन वो पूरा वीक आपका इंतजार करते हैं, ज्यादा उनके और आपके दरमियान ज्यादा है। तो ये मैं एक नज़्म लेके के आया हूँ, ये कलाम है मौला अली रसूलान की, ये लिखने वाले हैं अबुल हसन खावर।
1: माशाल्लाह,
8: तो मैं चाहता हूँ की मैं तमाम सुनने वालों के ये नज़्मातों की नजर
1: डालूं।
8: तो शायर लिखता है, आंख खोली नहीं हैदर ने गोहर होने तक।
1: होई होई होई होई, क्या कहने क्या कहने,
8: यानी सरकारे दो आलम की नजर होने तक
1: होने तक। सुभानअल्लाह माशाल्लाह,
8: उसके मासूम तबस्सुम पे बलागत कुर्बान।
1: माशाल्लाह सुभानअल्लाह,
8: सो रहा है कोई गुट्टी के असर होने तक।
1: वाजी वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
8: ऐसी कोम्पल की नमू देखने वाली होगी, बागबान जिस पे नजर रखे शजर होने तक।
1: वाजी वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
8: जिसको तलीम करें सीनाए नशरा वाले, उसको क्या देर लगेगी इलम का दर होने तक।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
8: बहुत शुक्रिया, ये हासिल नज़्म शेर है मौला अली रसूलान की।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
8: जिसको तलीम करें सीनाए नशरा वाले,
1: हाय हाय,
8: उसको क्या देर लगेगी इल्म का दर होने तक।
1: माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने, वाह हाय हाय हाय हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह।
8: आगे सुनिए जनाब
1: जी।
8: एक शब बिस्तर अनवर पे अली सोए थे, हिजरत वाली रात।
1: जी हिजरत वाली रात, जी जी।
8: एक शब बिस्तर अनवर पे अली सोए थे, राज क्या क्या ना खुले होंगे सहर होने तक।
1: आए हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत
8: ये आपकी मोहब्बतें हैं,
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरा, माशाल्लाह, क्या
8: मैं नियाज मान लूं, माशाल्लाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
8: अगला शेर
1: क्या कहने, वाह
8: अगला शेर सुन। वक्त ने देखे हैं सरकार के शानों पे अली,
1: सुभानअल्लाह,
8: रिश्ते पांव पड़ी जेर जबर होने तक।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
8: आखिरी शेर है जनाब
1: जी जी।
8: उनको तकना भी इबादत है तो आओ खावर।
1: हाय हाय,
8: उनको तकना भी इबादत है तो आओ है आओ खावर।
1: वाह वाह,
8: इस तखयल में उतरते हैं हुनर होने तक।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, बहुत गहरा बहुत ही गहरा, वाह वाह वाह वाह
8: सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक हमेशा ही ऐसे ही गुनगुनाते रहे माशाल्लाह, और खूबसूरत गुफ्तगू करते रहे, अली अली करते रहे माशाल्लाह। मैंने भाई
8: माशाल्लाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका। होय होय होय होय, क्या कहने, और यहाँ भी हमने क्या करना है कि यहाँ पे अजान पेश करनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के, जो भी मेरे बहन भाई साथी हैं, दोस्त बाब अजीज़ हैं, और बड़े इत्तेहराम के साथ बड़े प्यार के साथ हम अजान सुनेंगे, और उसके बाद हमारा साथ दे रहे हमारे साजिद भाई हैं फ्रॉम शफीर से हैं, और बाकी जो कॉलर फ़ोन कर रहे हैं प्लीज़ आप लाइन ड्रॉप कर दें, और साजिद भाई की जो आखिरी कॉल होगी उनकी होगी माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इनका सबका।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं साजिद भाई हैं ऑल द वे फ्रॉम शेफील्ड से, द सुपरस्टार इज ही है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आपके जो जाने वाले हैं वो आपको सलाम पेश करते हैं। और यू हैव हर्ड रूबी जी जिन्होंने लंदन से फ़ोन किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो वो शेर तारीफ करती हैं माशाल्लाह जी। गो हैड विद योर सॉन्ग बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। जी गो हैड।
1: सबको स्पेशल
0: जी।
1: पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं।
0: क्या कहने,
1: ये दिल लगी ये शोखिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, गता उतर के आ गई जमीन पे, देही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार के, पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं।
0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वाओ अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी आया करें मेरे भाई, हम आपका इंतजार करते हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वाओ। राइट सिमी जी, आई डू अपोलोजाइज टू यू, आपने हमें याद कर रही है, और आई डू अपोलोजाइज टू यू एज वेल। और गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आई एम सॉरी आई कुडंट टेक यू ऑन, आई डू अपोलोजाइज टू यू एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ने कोशिश करते रहिए, और माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आई होप यू डोंट माइंड। इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग प्रोग्राम अगेन इंशाल्लाह जल वेन्सडे इवनिंग। टेल योर फैमिली, टेल योर फ्रेंड, टेल योर कॉलीग, टेल एवरीबॉडी टू ट्यून इन टू सुन रेडियो 103.2 एफएम। और हमारे जो नए कॉलर आएंगे वहाँ पर डाबी से, उनका भी शुक्रगुजार ममनून उनका कि वो भी मुझे याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे भी हम कलाम होंगे और जो आने वाले दिनों में, और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज ऑन शबहर, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल द ब्यूटीफुल लिसनर्स।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre at 11, some breaking news. Pakistan's Prime Minister's announced a peace deal between the US and Iran has been agreed. According to Shehbaz Sharif, both sides have declared the end of military operations on all fronts, including in Lebanon. US President Trump's written on Truth Social the Strait of Hormuz is reopened. Sir Keir Starmer's promising to call time on a system that's failing our children ahead of an expected social media ban. It's thought the Prime Minister will announce sweeping reforms for under-16s tomorrow, similar to those seen in Australia. Mariano Giannin's daughter Mia took her own life after being bullied online. He says things need to change drastically as his world's been turned upside down.
4: We will deal with this forever. This is like a life sentence for a crime that we didn't commit. We've been victims. But we need to deal with this.
3: The former Labour deputy leader Roy Hattersley has died aged 93. Sir Keir Starmer's paid tribute on social media, calling him a giant of the Labour movement. At the World Cup, Japan have grabbed a late equaliser to hold the Netherlands 2-2 in their opener. Earlier, Germany thrashed Curaçao 7-1. Lewis Hamilton has cut Kimi Antonelli's lead in the F1 drivers' standings to 41 points. He's taken his first victory in two seasons at the Barcelona-Catalunya Grand Prix. Luke Littler and Luke Humphreys have secured England a sixth World Cup of darts. The pair got a 10-5 victory over Michael van Gerwen and Kian van Veen in the final in Frankfurt. Littler says it's amazing.
5: That's the best we've played all tournament, and that's what we can't do every game, it's darts. Obviously we've had tough challenges over the past 2 days, and yeah, this was our best performance because we needed to put it in, and that's what we've done, and we got the job done. But yeah, I'm absolutely delighted.
3: And Emma Raducanu has been defeated in the tennis final at Queen's in London. The British number one lost in straight sets earlier to Croatian Dona Vekic. That's the latest from the Sky News Centre. I'm Bev Rimmer.